0: A lot of people take xylem husk for fiber.
1: Yes.
0: And?
2: अगर chia seed जितनी marketing xylem husk की हो जाए तो India की gut problems काफी सारी solve हो जाएंगी.
3: हो जाए. मुझे लगा आप कहेंगे variety होनी चाहिए fiber में. रोज रोज नहीं खा सकते आप piece of gold.
1: See, as a doctor, medicinal use किसी भी चीज का हो, I will not recommend without talking to your doctor. But isabgol is xylem husk is the superman for fiber, provided done right. Had with at least 3 glasses of water and at least 3 liters of water in a day. Ideally add a probiotic to it with curd.
3: Before meal, after meal.
1: 7 to 9 के बीच में, डिनर के 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद. और दवाई ना ले अपने बीपी और एंटीकोगुलेंट्स, अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ब्लड थिनर चल रहे हैं, वो सब उसके आसपास ना लें, क्योंकि वो जेल बनाता है, सॉल्युबल फाइबर है पेट में, तो डिले करता है अब्सॉर्प्शन. पता लगा आपको एंटीकोगुलेंट चल रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो दवाई 4 घंटे पहले और बाद में ना लें. और एक ब्रेथ टेस्ट करवा लें, क्योंकि अगर आपको सीबो जैसी प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि वो पेट में जाके एकदम से बना रहा है ना, जेल बना रहा है, और क्योंकि वो जेल बना रहा है, आप उसे पानी दोगे तभी वो बाइल एसिड को अब्सॉर्ब करेगा, बाइल एसिड को एक्सक्रीट करेगा, तभी आपका लिवर एलडीएल को खींचेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को और बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम करता है. डायबिटिक्स के लिए सब बहुत अच्छा होता है, डिले करता ना मामले को, ठंडा कर देता है. जैसे आपकी किसी लड़ाई हुई तो समझदार आदमी कहता है लेट्स स्लीप ऑन इट टुनाइट, आई विल नॉट रिएक्ट टुनाइट, कल सुबह बात करते. जो जेंजी होता है वो उसी रात को भिड़ जाता है, मतलब सब कुछ लेके. तो इसबगोल कूल्स इट डाउन फॉर अ टाइम. सो वी हैव टू बी स्मार्ट, बिकॉज फाइबर इज फॉर योर गट बैक्टीरिया, एंड गट बैक्टीरिया आर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ.

0: He was right at the top. We have breaking news coming in, and this is from the national capital itself. It's the Jantar Mantar violence that's back in focus. We're speaking about the occurrences on July 20th, which has, in fact, had several debates, several conversations, speculation over it in the aftermath of what unfolded. Now, right-wing activists' shocking remark comes to the forefront little over a month post it happened. The activist says, cracked a man's skull open. Activist Swatantra says didn't even go to jail. In fact, activist Swatantra comes out to say saved by BJP connections. My shoes and batons are from Delhi police. That's what this particular right-wing activist has in fact come out to say. This is the very visual, the picture of the person that we're referring to. And let's first listen in to what he has said before we proceed with more details.
1: नीसु जिसके पापा का सर फटा था मेरे द्वारा ऐसा वो लोग कह रहे थे मेरे कड़े से लगा था तो उन लोगों की तरफ से ये बात कहा जा रहा था कि अगर मेरे पापा को इंसाफ नहीं मिला तो हम जहर खा के मर जाएंगे तो प्रशासन के द्वारा हमको मेरे ऊपर लगना चाहिए था 307 क्योंकि स्टिचेस आया हुआ था लेकिन वहां पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी कपिल मिश्रा जी चिराग पासवान जी ये सारे अपने बड़े भाई और रही बात हम जो बचे वो बचने का सिर्फ एक ही कारण है हनुमान जी का आशीर्वाद था क्योंकि हमको फंसाया जा रहा था ये लोग कानून को चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं जब कानून की तरफ से क्लियरली बता दिया गया मेडिकल रिपोर्ट में आपका नहीं है जो फोरेंसिक लैब या जो भी कह लीजिए कहीं पे भी नहीं आया कुछ भी आरएमएल वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे उनका कहीं भी नहीं आया है कि आपके पास 60 स्टिचेस या 7 स्टिचेस लगाओ कुछ भी नहीं ये लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आज राहुल गांधी जी मेरे बारे में पोस्ट कर रहे हैं लेकिन जब भारत के अंदर मेरे ऊपर इतना अटैक होने का संभावना बना तब राहुल गांधी हमको जानते भी नहीं थे तो आप समझ जिस तरीके से जितने विपक्ष के नेता मेरे पीछे पड़े हैं ना ये लोग कहीं ना कहीं एक आवाज दबाना चाहते हैं
0: Yes, with that, Anshul Singh joins us on the broadcast with more details on the same. Anshul, a very good morning to you. These are big, big confessions of a sort, at least from his own side that's coming in. Now, what this does is it brings another layer of investigation perhaps into the July 20th episode because there was a lot of conversation going on social media as well. There were certain videos circulating where people were posing questions about there being certain people with weapons like batons of this kind that we see in his hand in Connaught Place, that one visual that we are playing. What exactly happened here and what exactly is he trying to insinuate here?
2: Well, when the video

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Many young footballers today want to grow up and be like Lamine Yamal. However, one 15-year-old from Kerala has taken that to a whole new level, as he has gone viral for bearing a stunning resemblance to the Spain and Barcelona forward. Not only are they similar looking in terms of their hairstyle and build, the two even sport similar braces on their teeth. Alan James, hailing from the locality of Chakkuvali in Kerala, went viral after being spotted during Onam celebrations in the state. However, he had known about the resemblance for a while, even if he never stopped to think too much about it. Many people have been telling me for a long time that I look like Yamal, but I never really paid much attention to it. I suddenly became noticed around the World Cup. James is also a keen footballer, but prefers to play in defense rather than up front. Interestingly, his virality has also served to benefit his local academy.
1: Because of him, our academy is also getting promoted, and he became the superstar from last 4 or 5 days.
0: Kerala has long served as a hotbed for football in India, but few young players have ever had the social media buzz that James has. Still, no matter how his football career goes, the viral moments will live long in the memory.
2: चाहे चंपत राय बंसल हो, महाचोर अनिल मिश्रा जैसे चोर, गोविंद देवगिरी जैसे जो कोषाध्यक्ष है, वो मौन धारण कर लेते हैं. गोपाल राव जैसे लोग मौन धारण कर लेते हैं. नीपेंद्र मिश्रा जैसा महाचोर जो पूरे उस निर्माण के 40% वाला उसके ऊपर लगा हुआ 40% वाला व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त हुआ वो व्यक्ति, उनके साथ वो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से बैठा देने से इन चोरों के ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे एयर मार्शल साहब, और उनके उनको जेल भेजेंगे. ये हम सब लोग पूरे प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, देश के लोग जानना चाहते हैं.
3: पुराने लोगों ने जो ट्रस्ट में थे उन्होंने घपला किया, बेईमानी की, उसका क्या हो रहा है. कुल मिलाकर के राज्य सरकार ने जो SIT गठित की थी उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि इंसाफ करेगी. और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री भी शुरू से लेकर आखिर तक मंदिर के हर क्रियाकलाप से मैं शामिल रहे हैं. बल्कि मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहूँ कि जो काम धर्माचार्य को करना चाहिए था ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए प्रधानमंत्री ने वो सब काम भी किए. ट्रस्ट भी प्रधानमंत्री ने बनाया. तो राज्य सरकार इस मामले पर या प्रधानमंत्री इस मामले पर मौन क्यों है?

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And the scene's happening outside the Parliament Street Police Station at the moment, where CJP team has already reached and CJP has sought the arrest of activist Swatantra Bhardwaj. Seeking attempt to murder case on the activist, CJP has said book Swatantra Bhardwaj for attempt to murder. Congress's legal team that is also assisting Nishu Azad. After Rahul Gandhi's social media post, the Congress legal team that swung into action, according to sources that tell India Today that the Congress's legal team is also at the Parliament Street Police Station at the moment. Watch those pictures as there is heavy barricading, heightened security at the Parliament Street Police Station, where Nishu Azad, along with Chandrasekhar Azad, her father Sanjay Kumar, Saurav Das and Ashutosh Ranka of the CJP, all five inside the police station, talking to the top cops as they demand action against Swatantra Bhardwaj. Also saying, we will seek pressing of hate speech section, habitual offender and SCST Atrocities Act into the FIR. Remember, all of this is coming in from sources at the moment, because as we understand that all five are inside the police station talking with the top cops. So there has been no follow-up thereafter to whether they have reached any conclusion so far. But as we understand, the situation is getting tense. Congress's legal team that is also helping Nishu Azad seeking immediate arrest of Swatantra Bhardwaj for attacking Nishu's father. Listen into all the responses that have come in so far.
1: पुलिस ये बार बार बोल रही थी कि 2800 से ज्यादा हार्डेंड क्रिमिनल्स हमने आइडेंटिफाई किया जंतर मंतर पे जो आए, तो उनको क्यों आप लोग वो इम्यूनिटी देना चाह रहे हैं? हमने फिर बोला कि वो 2800 को आप आइडेंटिफाई करिए, अगर उन्होंने कुछ संगीन अपराध किया है तो उनके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन करिए और जेल में डालिए। अब तो यहाँ पे खुलेआम अब गुंडे बोल रहे कि हम आए थे उस टाइम पे, हमने सर फोड़ा लोगों का, एंड उसके बाद वार्न कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं लड़कियों को, छोटी लड़कियों को, कि हम लोग उनके साथ भी अपराध करेंगे। तो क्या कानून व्यवस्था इतना दुर्बल है पूरे देश, पूरे दिल्ली में? तो दिल्ली पुलिस को ये जवाब देना चाहिए। आज हम इसलिए आए हैं कि तब से लेके अभी तक दिल्ली पुलिस के तरफ से कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया गया।
2: हमारी पूरी टीम नीशु, उनके पिताजी संजय जी के साथ पहले दिन से खड़ी रही है। हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस से मांग करेंगे कि तुरंत इन गुंडों को, जिन्होंने खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई किया है, उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाए और जितनी भी संगीन धाराएं इन पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए।
0: Let me take this to my colleagues Anshul Singh and Aishwarya Paliwal, who are reporting from outside the Parliament Street Police Station, getting us

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: And breaking news coming in on the big developments in the activist Swatantra case. Sections of SC-ST Act to be added in the FIR against the right-wing activist. A decision on adding attempt to murder will also be taken after a fresh MLC of the victim. Fresh FIR, however, is unlikely, but sections of SC-ST Act will be added in the existing FIR. That's the breaking news that we're bringing to you. Remember, this is arising out of one of the protesters at the CJP protest being hit on the head. And this activist named Swatantra has claimed that he hit him on the head deliberately. Swatantra Bhardwaj at the Jantar Mantar protest site had been identified.
1: ये जो स्वतंत्र भारद्वाज है ना, ऐसे गुंडे हैं, वो जंतर मंतर आए, क्या दिल्ली पुलिस ने उस टाइम पे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया? और जब वो आया, उसे थ्रेट देके आया, वो निशु को थ्रेट देते आ रहा था, एंड जब वो आया जंतर मंतर, उसने आके इतना संगीन अपराध किया, वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया। उसके बाद FIR भी फाइल हुआ, तब भी दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है, तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या वो 2800 हार्डन क्रिमिनल्स में से एक नहीं है? तो दिल्ली पुलिस एक जगह सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोलती है, यहाँ पे एक्शन कुछ और लेती है।
2: वो सारे काम कर रहा है जिससे देश की अखंडता एकता पे प्रहार होगा और पीड़ित परिवार डरावा। संजय और उनकी बेटी जिनको लगातार बलात्कार करने की जो है धमकियां दी जा रही है, जिनको लगातार तेजाब डाल के जलाने की, उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही है, वो डरे हुए। अगर देश की राजधानी में ये हाल है

0: Many young footballers today want to grow up and be like Lamine Yamal. However, one 15-year-old from Kerala has taken that to a whole new level, as he has gone viral for bearing a stunning resemblance to the Spain and Barcelona forward. Not only are they similar looking in terms of their hairstyle and build, the two even sport similar braces on their teeth. Alan James, hailing from the locality of Chakkuvali in Kerala, went viral after being spotted during Onam celebrations in the state. However, he had known about the resemblance for a while, even if he never stopped to think too much about it. Many people have been telling me for a long time that I look like Yamal, but I never really paid much attention to it. I suddenly became noticed around the World Cup. James is also a keen footballer, but prefers to play in defense rather than up front. Interestingly, his virality has also served to benefit his local academy.
1: Because of him, our academy is also getting promoted, and he became the superstar from last 4 or 5 days.
0: Kerala has long served as a hotbed for football in India, but few young players have ever had the social media buzz that James has. Still, no matter how his football career goes, the viral moments will live long in the memory.
2: चाहे चंपत राय बंसल हो, महाचोर अनिल मिश्रा जैसे चोर, गोविंद देवगिरी जैसे जो कोषाध्यक्ष है, वो मौन धारण कर लेते हैं. गोपाल राव जैसे लोग मौन धारण कर लेते हैं. नृपेंद्र मिश्रा जैसा महाचोर जो पूरे उस निर्माण के 40% वाला उसके ऊपर लगा हुआ 40% वाला व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त हुआ वो व्यक्ति, उनके साथ वो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से बैठा देने से इन चोरों के ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे एयर मार्शल साहब, और उनको जेल भेजेंगे. ये हम सब लोग पूरे प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, देश के लोग जानना चाहते हैं.
3: पुराने लोगों ने जो ट्रस्ट में थे उन्होंने घपला किया, बेईमानी की, उसका क्या हो रहा है. कुल मिलाकर के राज्य सरकार ने जो SIT गठित की थी उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि इंसाफ करेगी. और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री जी शुरू से लेकर आखिर तक मंदिर के हर क्रियाकलाप से मैं शामिल रहे हैं. बल्कि मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहूँ कि जो काम धर्माचार्य को करना चाहिए था, ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए प्रधानमंत्री ने वो सब काम भी किए. ट्रस्ट भी प्रधानमंत्री ने बनाया. तो राज्य सरकार इस मामले पर या प्रधानमंत्री इस मामले पर मौन क्यों है?
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: बस करो बस करो, ये खाना बचने के लिए, ये होली खेलने के लिए नहीं है, पागल हो गए तुम लोग।
1: The sequel will once again take the story to Australia, bringing back the franchise that gave audiences an unforgettable mix of friendship, fatherhood, and hilarious chaos.
2: Hey.
1: The original film, headlined by Akshay Kumar, Vidya Balan, Ritesh Deshmukh and Fardeen Khan, followed carefree bachelors whose lives are turned upside down when a baby suddenly enters their world.
3: Okay, abhi pakad isko. I'll hold this. Isko pakad. Arre aise nahi.
4: तो फिर होल्डिंग है करेक्टली,
0: ऐसे पकड़ते हैं बेबी को।
4: तुझे कैसे पता?
0: अरे मुझे सब मालूम है, मैंने सब बच्चे बच्चियां पकड़े हैं। होल बेब।
1: What begins as a comic nightmare eventually turns into an emotional journey of love, responsibility and family.
5: Nurse, take her to the ICU. Prepare the ventilator, quick. Please, आप लोग ऑब्जर्वेशन रूम में चलिए, प्लीज।
6: ओके।
5: 100% ऑक्सीजन, कैन आई हैव आईवी एक्सेस स्ट्रेट अवे?
7: 27, 28, 29, 30.
8: Still flatline, डॉक्टर।
5: एपिफिन,

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: We have breaking news coming in. It's heat mounting on goon activist Swatantra Bhardwaj. Now, teams of Delhi police have reached Bulandshahar for investigation. Swatantra Bhardwaj's last location was traced to Bulandshahar in UP. So we're seeing that after the CJP's agitation and also after Nishu herself said that she was getting rape threats, it is heat which is mounting on the goon activist Swatantra Bhardwaj. Teams of Delhi police have reached Bulandshahar for investigation. Swatantra Bhardwaj's last location was traced to Bulandshahar in UP. Remember, all of this had happened back in June, and it was on June 23 that the incident had happened, after which the issue got buried under the headlines. But now we're seeing all of this is resurfacing because Swatantra Bhardwaj himself, a self-proclaimed Hindu activist, he himself made these comments out on a podcast, which has resurfaced these claims of him actually saying that he did crack open the skull of the protesters' fathers. For more on that, we also have Arvind Oja joining in. Arvind, you've been up ye story pe hai, aapne Swatantra se khud bhi baat ki, aur abhi hame pata chal raha hai ki Delhi police ki team Bulandshahar pahunch chuki hai, aur unki last location Swatantra ki Bulandshahar thi. Ab kya possible arrest hum dekh sakte hain?
1: देखिए, जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और दिल्ली पुलिस ने एससीएसटी का केस भी दर्ज किया है और मल्टीपल वीडियो, चाहे स्वतंत्र के हो चाहे निशु के फादर के, वो सामने आए हैं. तो इन सभी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिल्ली पुलिस की जो नई दिल्ली इलाके की टीम है वो, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम बुलंदशहर में मौजूद है. चूंकि लास्ट लोकेशन स्वतंत्र भारद्वाज की बुलंदशहर की मिली थी, तो बहुत मुमकिन है कि बुलंदशहर में जो स्वतंत्र है उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करेगी, और अगर जरूरत होगी तो दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर सकती है. लेकिन फिलहाल जो सोर्सेस है उन्होंने बताया है कि दिल्ली पुलिस की टीम बुलंदशहर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची है. बहुत सी चीजें हैं जिनको वेरीफाई करना है स्वतंत्र से, इस वजह से दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है.
0: और हम लोग देख रहे हैं कि अभी सीजेपी भी इस पे हीट बढ़ा रही है, वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं. निशु के इसमें काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रही है कि उसको भी रेप थ्रेट्स मिल रहे थे बहुत सारे आफ्टर ये इंसिडेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ. आपने जब स्वतंत्र से बात की तो उसका जो पॉडकास्ट वायरल हुआ था और जिस तरह का इंटरव्यू उसने आपको दिया, उन दोनों में आपको क्या अंतर लगा? आपको लग रहा है कि स्वतंत्र ने ये सेल्फ डिफेंस में किया, या फिर अब आपको लग रहा है कि सीजेपी क्योंकि अब इस पे इतना निशाना साधे हुए है स्वतंत्र पे, तो हो सकता है कि अब एक्चुअली उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए?
1: देखिए, इसके ऊपर पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गई है, लेकिन जो एफआईआर है, एफआईआर में जो निशु के फादर हैं संजय आजाद, उन्होंने ये लिखवाया है कि वीडियो बनाने को लेकर वहां जंतर मंतर पर स्वतंत्र से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई और चोटें आई. स्वतंत्र से इंडिया टुडे की टीम ने बातचीत की, उसने ये कहा कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में जो कड़ा है उस कड़े से चोट लगी संजय आजाद को. वहीं संजय आजाद का भी एक वीडियो है जिसमें वो ये कह रहे हैं, 24 जुलाई को सोशल मीडिया पर निशु के साथ उन्होंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं लेकिन गलती से चोट लगी संजय आजाद को. और उसके बाद उस वीडियो में स्वतंत्र का पिक्चर भी अपलोड किया है उन्होंने, जिसमें स्वतंत्र की पिटाई करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, और उसमें वो भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर पुलिस नहीं आती तो हाल और बुरा होता. तो मल्टीपल वीडियोज है, एफआईआर की कॉपी है, दिल्ली पुलिस सारे वीडियोज को एनालाइज करेगी, जिनके भी जो स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद जो लीगल एक्शन है वो दिल्ली पुलिस लेगी इस मामले में. और शायद ही इसी वजह से बुलंदशहर दिल्ली पुलिस की टीम और लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम वो पहुंची हुई है.
0: We're seeing multiple videos surface of the incidents from different accounts as well. Clashing stories also of surfacing after this has now regained traction. The case has gained traction and now we see that Delhi police has reached Bulandshahar, which was the last trace location of Bhardwaj, for more investigation. Thank you so much for joining in with those inputs, Edmund.

0: ये हमारी बात भी हुई विक्टिम से, उन्होंने कहा कि थाने के अंदर जब वो थे तो 72 घंटे की वक्त की बात थी कि 72 घंटे में वो एक्शन लेंगे। तो ऐसे में जब अगर पुलिस ने ये तय कर लिया कि वो धाराएं जोड़ेगी तो जाहिर तौर पर उसके बाद कहीं स्वतंत्र अंडरग्राउंड ना हो जाए, वो छिप ना जाए, भाग ना जाए, इसलिए पुलिस पहले ही एक्शन में आ गई। और इधर बातचीत चल रही थी और उधर हमें पता चला कि जो पुलिस की एक टीम है वो दिल्ली, नई दिल्ली पुलिस की, वो पहले तो बुलंदशहर पुलिस से संपर्क किया, उन्होंने जो वेयर अबाउट हो सकते थे उसके संभावित स्वतंत्र के वो शेयर किया गया, और उसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम भी बुलंदशहर पहुंच गई है जो वहां पर लगातार ट्रैक करने की स्वतंत्र को कोशिश जारी है। जी
1: ऑलराइट हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हमसे बने रहिए क्योंकि और डिटेल्स के लिए हम आपसे पास आते रहेंगे, बट लेट अस गिव अवर व्यूअर्स सम कॉन्टेक्स्ट एज टू व्हाट रियली हैज बीन द केस सो फार। ट्रबल हैज बीन माउंटिंग फॉर राइट विंग हिंदुत्व एक्टिविस्ट स्वतंत्र भारद्वाज एवर सिंस, एज वी टोल्ड यू, हिज वीडियो ब्रैगिंग टू बी टू हैव क्रैक्ड ओपन द स्कल ऑफ द फादर ऑफ वन ऑफ द सीजेपी प्रोटेस्टर्स वेंट वायरल। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट a fresh FIR is unlikely despite the demands being made by the CJP and the family of the victim that section of the SCST Act be added. So as of now, a fresh FIR is unlikely, but there are also indications that the attempt to murder charge may be added onto the existing FIR as we speak. Now, Nishu Azad, remember the victim whose father Sanjay was assaulted by Swatantra, and she has put out videos, as you can see on the screens, purportedly showing that assault happening. Claire said that he and others like him abused women, issued rape threats and demanded action against them. She is now added that cops are cooperating only after political pressure happened. Meanwhile, the Cockroach Janata Party has demanded that Swatantra be booked for attempted murder and be arrested immediately. The group has further alleged that law and order has completely collapsed in the national capital. Now, of course, Swatantra Bhardwaj did boast that he has cracked over the skull of CJP protester Nishu Azad's father, Sanjay, but he didn't even stay in jail beyond a few hours because he allegedly had the blessings of leaders such as BJP's Kapil Mishra, who incidentally is right now the law minister of Delhi. He is now trying to play the victim card in his interview to India Today. Let's listen into that and other reactions.
2: कुछ लोग कह रहे हैं अनजाने में मेरे सिर पर चोट मारकर सोचते कोई तीर बहुत बड़ा तीर मार दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर वहां पर 2 मिनट पुलिस ना आती तो फोटो में देख सकते हो तुम्हारी दशा किस तरह का कर रखी थी। पुलिस को सिर्फ बहम हो गया था मैं तुझे मार रहा हूँ, तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया था गलती से। बन भी बन कर ले भाई, जहाँ चाहे वहाँ मिलने के तैयार हूँ।
3: वो सारे काम कर रहा है जिससे देश की अखंडता एकता पे प्रहार होगा और पीड़ित परिवार डरावा। संजय और उनकी बेटी जिनको लगातार बलात्कार करने की जो है धमकियां दी जा रही है, जिनको लगातार तेजाब डाल के जलाने की, उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही है, वो डरे हुए। अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के हाल होंगे आप देखो। तो हम लोग गए थे अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने हमें वादा किया कि वो 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करेंगे।
4: ये जो स्वतंत्र भारद्वाज ऐसे गुंडे हैं, वो जंतर मंतर आए क्या? दिल्ली पुलिस ने उस टाइम पे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, और जब वो आया उसे थ्रेट दे के आया, वो निशु को थ्रेट देते आ रहा था, एंड जब वो आया जंतर मंतर उसने आके इतना संगीन अपराध किया, वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया। उसके बाद FIR भी फाइल हुआ, तब भी दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है, तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या वो 2800 हार्डन क्रिमिनल्स में से एक नहीं है? तो दिल्ली पुलिस एक जगह सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोलती है, यहाँ पे एक्शन कुछ और लेती है।
5: SCST एक्ट को इस FIR में ऐड कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें सेक्शन 308 के अलावा, IPC 308 के अलावा 307 पे मेडिकल ओपिनियन लेके वो लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल ओपिनियन लेने के लिए डॉक्टर से बात होना जरूरी है। आज गजेटेड हॉलीडे होने के कारण द डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ, बट विद इन टूडे दे विल फाइनलाइज इट। अ सेपरेट कंप्लेंट हैज ऑल्सो बीन गिवन बाय निशु इटसेल्फ, क्योंकि रेप का थ्रेट उनको दिया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसका कॉग्निजेंस दिल्ली पुलिस ने लिया है।

0: सुनवाई कर रही थी लेकिन अब रिस्पॉन्स कर रही है, तो आई होप कि पुलिस इस तरीके से रिस्पॉन्स करती रहेगी और उनके सपोर्ट नहीं मिलेगा।
1: A confrontation at Delhi's Jantar Mantar has now snowballed into a fresh political and legal battle. CJP protesters gathered outside the Sansad Marg police station on Friday, demanding justice for their supporter Nishu Azad's father, Sanjay Kumar Yadav. The protesters are demanding the arrest of a man named Swatantra Bhardwaj for allegedly assaulting Nishu's

0: father during the Jantar Mantar protest in July. The CJP also wants him booked under the SCST Act and for attempt to murder.
1: कुछ लोग कह रहे हैं अनजाने में मेरे सिर पर चोट मारकर सोचते कोई तीर बहुत बड़ा तीर मार दिया तो मैं कहना चाहता हूं अगर वहां पर दो मिनट पुलिस ना आती तो फोटो में देख सकते हो तुम्हारी दशा किस तरह का कर रखी थी।
2: तो आज भाई जी का आजाद जी के साथ हम पुलिस स्टेशन गए, वहां पर हमने मांगे रखी कि हम चाहते हैं कि FIR के अंदर 307 एंड SCST एक्ट ये सब ऐड हो और उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए।
3: निशु को थ्रेट देते आ रहा था एंड जब वो आया जंतर मंतर उसने आके इतना संगीन अपराध किया, वहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया, उसके बाद FIR भी फाइल हुआ तब भी दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है, तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या वो 2800 हार्डेंड क्रिमिनल्स में से एक नहीं है? तो दिल्ली पुलिस एक जगह सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोलती है, यहाँ पे एक्शन कुछ और लेती है।
0: Sources tell India Today that Delhi police has agreed to add SCST Act provisions to the existing FIR. A fresh FIR is unlikely. But the demand for an attempt to murder charge remains unresolved.
4: Inqilab!
5: Zindabad!
4: Inqilab!
5: Zindabad!
4: Inqilab!
5: Zindabad!
4: Delhi police, hush me
5: out! Hush me out! Hush me out!
0: India Today has learned that police are seeking a fresh medico-legal certificate of Sanjay Kumar Yadav. A decision on the attempt to murder section will be taken after the assessment. Police maintain that action has already been taken. The FIR records the dispute as beginning over video recording and names Swatantra and Suraj in connection with the alleged assault. The controversy escalated this week after a video surfaced in which Swatantra allegedly spoke about having assaulted Sanjay and bragged that no attempt to murder charge was added. In the video, he claimed proximity to some BJP and NDA leaders and boasted that he was out of police station within hours after assaulting Nishu's father. That video has become a major flashpoint in the case. Speaking to India Today, Swatantra played the victim card, alleging that he acted in self-defense.
6: ये लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी मेरे बारे में पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब भारत के अंदर मेरे ऊपर इतना अटैक होने का संभावना बना तब राहुल गांधी हमको जानते भी नहीं थे। तो आप समझ लीजिए जिस तरीके से जितने विपक्ष के नेता मेरे पीछे पड़े हैं ना, ये लोग कहीं ना कहीं एक आवाज दबाना चाहते हैं।
0: The political battle has widened. Leader of opposition Rahul Gandhi on Friday posted a social media message assuring support to Nishu. From a confrontation at Jantar Mantar to a showdown outside a Delhi police station. The fight now moves to the FIR and the question over whether tougher charges and an arrest will follow. With Aishwarya Paliwal, Bureau Report, India Today.
7: So the woman who actually brought in the entire thing into focus, Nishu Azad, who's fighting for her father now, she spoke exclusively with India Today after she and CJP representatives met with Delhi police. At Jantar Mantar, remember, protesters say that police have given them assurances and they are confident that the attempt to murder charges will be added to the FIR within 72 hours. But will that really take place? Take a look.
8: बताइए जब आप थाने पहुंची तो आप लोगों की मेन डिमांड क्या थी, क्या रिटर्न में लिख कर ले गए थे?
2: देखिए हमारी डिमांड ये थी कि जो अब तक पुलिस जिसको डिले करते आ रही थी, जिस चीज पे कार्रवाई नहीं कर रही थी क्रिमिनल के अगेंस्ट जिसने पापा के ऊपर हमला किया, उनका सर फोड़ा, तो हमारी मांगे ये थी कि आप उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए, वो खुलेआम घूम रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है और कितना प्राउडली अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारी मांगे यही थी कि आप इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए, ऐसे लोग खुलेआम नहीं घूमने चाहिए, ये कब हम पर हमला कर दें और लोगों पर हमला कर दें कुछ पता नहीं।
8: कितनी देर तक थाने में थे और क्या कोई रिटर्न कंप्लेन आप लोगों की ओर से अब फ्रेश दी गई है?
2: हाँ, हमने आज एक फ्रेश कंप्लेन दी थी, जो कि जो भी लोग मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे मेरे DMs में और कमेंट सेक्शन में, मेरे गंदे गंदे स्टिकर्स बना रहे थे, मेरे को रेप थ्रेट्स दे रहे थे, इन सब के अगेंस्ट आज हमने फ्रेश कंप्लेन फाइल की है।
8: वो सेपरेट FIR के लिए, लेकिन जो FIR ऑलरेडी दर्ज है उसमें कौन कौन से सेक्शंस ऐड करने की डिमांड की और पुलिस ने क्या कुछ कहा?
2: देखिए, जिस तरीके से उस व्यक्ति ने हरकतें की थी, अपना एक घटना को अंजाम दिया था, उस हिसाब से उसके ऊपर 307 हाफ मर्डर का केस और SC/ST एक्ट ये सब लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हमने इस FIR के अंदर पुलिस से मांग की कि आप इसके अंदर हाफ मर्डर, SC/ST एक्ट और 307 की धारा लगाइए।
8: पुलिस ने क्या कहा?
2: उन्होंने हमें आश्वासन दिया है बिल्कुल ऐसा होगा और जरूर होगा और 72 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और 7 दिनों के अंदर इसका इस जो भी केस है इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी।
8: 7 दिनों का टाइम पुलिस ने दिया। ये बताइए कि क्या जो दूसरी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आपको थ्रेट दिया जा रहा है, तो क्या उसकी एक सेपरेट FIR की मांग की गई आपकी तरफ?
2: मांग भी की गई थी और आज हमने उनको रिटर्न दे भी दी, फाइल कंप्लेन करवा दी हमने।
8: उस दिन को अगर आप याद करेंगे जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, मारपीट हुई थी, आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं क्या हुआ था?
2: ऑलमोस्ट सबको ही बताया। एक्चुअली मैं और मेरे फादर प्रोटेस्ट में गए हुए थे और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो शायद उनको मेरे थॉट्स नहीं पसंद थे, तो वो मेरे को शायद पहले से जानते थे। तो मैं और मेरे भाई हम एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो कुछ लोग हमें कंटिन्यू घूर रहे थे, जिसमें से वही लोग थे जिन्होंने पापा के ऊपर हमला किया। तो पापा मेरे पास आए एंड उन्होंने बोला कि चलो कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं, मैंने मना कर दिया। तो पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया, तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा और पापा के साथ झटपट की। उतने में ही पुलिस ने देखा, पुलिस ने पापा को पकड़ा, तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया, जिससे पापा की ब्लीडिंग हुई और उनके साथ टाके आए। यस।
8: तो उस वक्त जब आप लोग थाने आए थे तो क्या कंप्लेन हुई थी और क्या उस वक्त आप सेटिस्फाई थे? आपने पुलिस से बोला?
2: नहीं, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि पुलिस हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे क्रिमिनल हम है और विक्टिम वो है।
7: Alright, so you heard from Nishu herself on what exactly was the sequence of events according to her. But let's try and get a ground reality with our colleagues Shivani Sharma and Ashwarya Paliwal is also joining us at this point. Shivani, let me come to you first. When it comes to a criminal case like this, the facts are pretty clear. The evidence is on camera. The confession is on camera as well. At a point like this, what exactly is Delhi police saying on why these charges were not put against Swatantra earlier?
9: See, what happened today was a meeting, and it was a detailed meeting between Nishu Azad, Chandrasekhar Azad, Saurabh Das and Ashutosh Ranka. And a lot of political support is also coming in from Rahul Gandhi for Nishu Azad. So now what is being claimed by Saurabh Das and also the Youth Congress legal team and the president of the Delhi Pradesh Youth Congress, Akshay Lakra, he says and he claimed that the police has admitted that there are certain points that have been missed in the initial FIR. The investigation is going on. And every evidence, be it the podcast videos, the videos of Nishu Azad's father and all the other important evidences for that matter, the medical legal whole case will be done again of Sanjay Azad to take those points that were initially missed from that FIR. That's the claim that has been made by the delegates, and they say that the police has assured that there will be action and within 72 hours the arrest will be done. That's what has been assured to them. And I have an update for our viewers that in Bulandshahr the Delhi police officials have reached there to question the accused Swatantra Bharadwaj, who had made those claims in a podcast, and after which all this protest has once again started against demanding the probe and to add certain sections that are non-bailable, like attempt to murder and the charges under SCST Act, which again the police has assured that they will be added to the initial FIR under the legal procedure, whatever the legal procedure is under that. Got it. Be done. So the investigations are moving ahead and the assurances have come from the police. So we have to wait and watch what the Delhi police does in this whole investigation ahead.
7: Got it. Ashwarya, if you look at, keep the investigation aside, As Shivani mentioned, there are lots of sources based, might happen, might not happen. It's all in the realm of what could happen in the next couple of hours. What is, however, clear is the political connections that have come into play. And this time come into play not by the political parties who jumped in to support Nishu, but also the names that were particularly taken by this man on that podcast, saying these are the BJP leaders who made calls to Delhi police because of which none of the charges applied. He goes on to brag, and I heard the full podcast really. You know, the full one-hour podcast that is there. I heard the full thing to really understand the psyche of the man. And what is crystal clear after that is this, that he says that, forget all of this, after the entire incident, because he claims he's the sufferer in this case, he got a call from the Delhi police saying ki aapko to koi case nahi darj karna hai. So this man, either he's bluffing or he clearly has political connections where he's named the leaders as well. He calls Prime Minister Modi his bada bhai. He calls Kapil Mishra his bada bhai. He says he names Chirag Paswan as well, saying, "Obhi humare bade bhai hain." Are any political leaders who've been named by him come up with a reaction yet?
10: Well, so no reaction coming in from those leaders whose names he's taken. But yes, one thing is very, very clear. This entire thing has become political. You know, but if you see the kind of statements that have been made and the kind of appeal which in fact was being made by Nishu, it was Rahul Gandhi who responded to it. And in his response tweet, he said, first and foremost, the Congress party and I am standing behind you. And he also questioned the Prime Minister Narendra Modi and the Home Minister Amit Shah. Rahul Gandhi specifically asked what's happening in these kind of cases and where is the law and order situation going? We are also seeing how now the entire protest and the people associated with it, the political colors can actually come out and can be seen. Yes, questions definitely are being asked of those leaders in the Bharatiya Janata Party. They are being asked, why did this person, this hour-long podcast, actually took your name? So that is something that the BJP on its own is very clearly looking at. But yes, there is a lot of pressure on the Delhi police at the moment. They will be looking at the statements that have been made and specifically the demand that was made today, which we hope will turn into a reality in the next 72 hours, is adding those sections, because that is something that the CJP is very keenly looking at. But yes, Chandrasekhar Azad, a key player in UP politics, he in fact was at the police station. So we could see a ripple effect of this in the upcoming Uttar Pradesh elections as well, Sonu.
7: Right, because the man is also from Uttar Pradesh, and which is what Shivani was also pointing out. Thank you both for joining us with the details on that story, both the criminal angle and the political angle as well. But talking about UP and talking about protesters, we've got more news for you. The Samajwadi Party and the CJP, the Gen Z group that shot to national prominence, could be eyeing at a political understanding in Uttar Pradesh. At least that's what the murmurs are at the moment. A meeting took place between CJP's Ashutosh Ranka and Akhilesh Yadav that has triggered speculation of a possible student movement ahead of UP polls. Now, the Samajwadi Party and the BJP have played down the meeting, while Congress has backed the outreach. Now, so is this a new SP-CJP equation taking shape in Uttar Pradesh ahead of the polls? Because if you'll remember, if not Akhilesh Yadav, then his wife certainly had gone to Jantar Mantar and met with Dipke and the rest while the protests were going on as well. So what exactly could this lead to? The next story explores.
11: The Samajwadi Party, the third largest in the Lok Sabha. CJP, the Gen Z group that has taken the country by storm. Will the two join hands ahead of the assembly polls in the country's biggest electoral state, Uttar Pradesh? A meeting between CJP's Ashutosh Ranka and SP Supremo Akhilesh Yadav on Thursday has sparked political tremors.
12: दलों का अपना अपना फायदा और इस बीच में लखनऊ के सपा दफ्तर में एक डेढ़ घंटे की मुलाकात अखिलेश यादव की और सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका की जरूर मुद्दे चर्चा में रोजगार और स्कूल अभियानों के रहे हैं लेकिन भविष्य में क्या राजनीतिक परिस्थितियां गठजोड़ की ओर इन दोनों दलों के इशारा करती हैं
13: जितना नुकसान हो गया
11: विद नीदर साइड मेकिंग एन ऑफिशियल स्टेटमेंट अबाउट द मीटिंग स्पेकुलेशन हैज इंटेंसिफाइड ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉन्च ऑफ अ स्टूडेंट मूवमेंट इन यूपी द एसपी ट्राइड टू प्ले डाउन द मीटिंग
13: खाने अंग्रेजी सबसे मिलते हैं, अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है।
11: The BJP too did not take the meeting seriously.
14: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उनसे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करता। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।
11: The SP's ally at the center, the Congress, backed the meeting.
15: अखिलेश जी इंडिया गठबंधन के हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं और उनके प्रयासों को भी हमारी शुभकामनाएं हैं, कांग्रेस की शुभकामनाएं हैं जो प्रयास वो कर रहे हैं।
11: CJP has garnered nationwide prominence and recognition following the Delhi protest, which led to the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. But will CJP and SP come together remains to be seen. With Samarth Srivastav, Bureau Report, India Today.
7: And it's been quite a day for the Cockroach Janata Party. On one hand, coalition, at least murmurs of one, and on the other, rebellion. Cockroach Janata Party is facing its first internal rebellion. A rebel faction has broken away from the launching of CJP, and they're calling themselves CJP D. D for Democratic. So CJP Democratic are now accusing the founder, Abhijit Dibke, of politicizing the movement and turning it into Team Kejriwal. So what exactly are, who are these people? What exactly is their agenda? Are they D-team of some other political party? Or is there an internal conflict of its own? The next story explores.
11: The Cockroach Janata Party, formed barely months ago, has suffered its first rebel breakaway. CJP volunteer Manish Brahm Bhatt has now floated the Cockroach Janata Party Democratic. Brahm Bhatt has accused the CJP leadership of having links with the Aam Aadmi Party, of selling out and politicizing the movement, of sidelining grassroots protesters, and alleges the CJP's aim is now to engage in political deals. But he has gone a step further, calling the Dibke-led camp Team Kejriwal.
16: आज हम कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत क्यों करनी पड़ी? आंदोलन देश का आंदोलन था, लोगों ने अपना खून पसीना बहाया तो आंदोलन सफल हुआ, पर आंदोलन सफल होने के बाद इसका सौदा हो गया है, इसका राजनीतिकरण हो गया है, अब ये टीम केजरीवाल बन चुकी है।
11: दिपके हाउएवर हैज हिट बैक।
17: अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी की बी टीम हूँ, तो मुझे लगता है ये सारे लोग बैठे आपस में और डिसाइड कर ले हम किसकी बी टीम है और किसकी क्या है। हमारे हिसाब से तो हम स्टूडेंट्स की ए टीम है।
11: ब्रह्म भट्ट सेज सीजेपी डी विल टेक ऑन करप्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच पार्टी इज इन पावर। द सीजेपी बिगन एज दिपकेस सटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट बिफोर इवॉल्विंग इनटू अ यूथ लेड प्लेटफॉर्म that spearheaded a campaign culminating in the resignation of Dharmendra Pradhan. And now, barely months into its existence, the movement is facing its first internal rupture. Factions and breakaways are the stuff of politics. But for a group that still describes itself as a pressure movement, this could be a first. Is CJPD the beginning of a new political experiment or the beginning of a new battle for the movement itself? Bureau Report, India Today.
7: All right, the CJP also reporting that there are barely 7 or 8 people there. So it's not really a rebellion of sorts, but just one disgruntled leader. But we'll leave it there for the moment and move on to other stories now. For 145 passengers on board the Air India flight AI2379 from Phuket to Delhi, and what began as a routine journey turned into very quickly one of terror when the aircraft suddenly lost altitude. The aircraft recovered, but 20 passengers and 4 crew members were seriously injured. The passengers have since been discharged, while 4 crew members remain under medical care. Now, the AAIB preliminary report provides the first detailed account of what unfolded inside that aircraft. And I'm going to read that timeline for you next. Now, it started at 9:32 a.m. The aircraft detected a sort of loss of its green hydraulic system. 4 seconds later, the blue and yellow hydraulic systems were also lost. And 1 second after that, the autopilot was disengaged. And 3 seconds later, a stall warning sounded for 2 seconds, and the aircraft then experienced an altitude dip of 292 feet. Imagine that, 300 feet almost drop that happened in a matter of seconds. What would that do to people who are inside? The aircraft then experienced an altitude dip of 292 feet. The sequence lasted only seconds, but was enough to injure passengers on board. The preliminary report also raised a separate and serious concern. The pilot in command, we are looking at Sudeep, who tested non-negative for psychoactive substances identified as marijuana in both the initial and confirmatory tests. Importantly, the AAIB report says that the pilot in command was not flying the aircraft when the incident occurred. The flight was being operated by the co-pilot, who tested negative. The pilot in command took control after the incident. Now, that distinction is significant as investigators now examine both the aircraft systems and the circumstances surrounding the crew. So, yes, the pilot in command was found positive for marijuana, but he was not the one in charge at that moment. So, what exactly is the fault here? Was there something wrong with the aircraft? Now, Air India says that safety remains its priority, but the airline also says it has begun 100% testing of all its pilots and will take whatever action warranted. It has also said it remains committed to implementing recommendations emerging from the investigation, but it is also a preliminary report. The bigger question at the moment is of the technical failure. The simultaneous loss of three hydraulic systems, the autopilot disengagement, and the stall warning will now come under further scrutiny. And alongside that, technical investigation, well, that's another question altogether. Why did a flight being operated at 36,000 feet suddenly lose nearly 300 feet of altitude? And what exactly triggered the chain of events? The answers are still awaited. Amit Bhardwaj joins us for more details on the story. Amit, the story is just getting murkier by the day. We've been reporting on the condition of the pilot. Initially, the headlines has jumped to say, oh, he was high on marijuana, which he was, but turns out he was not the one who was flying the aircraft at all. Second, the report still does not explain. It's been almost a month now. The report does not explain. Okay, I'm just gonna take a break from this, Amit, and return to you because we've got a breaking news. All right, breaking news coming in. Swatantra Bharatwaj, the right-wing activist, has now been arrested. Swatantra Bharatwaj has now been detained near the Dhamra Nara village in Bulandshahr, Uttar Pradesh. We're now getting reports that the man who had boasted of attacking other activists and attacking other people, protesters at Jantar Mantar, who was caught on camera doing so and then bragged about not being arrested by the Delhi police under strict charges, has now finally been picked up by Delhi police. Swatantra Bharatwaj, that man on your screen, a day after the daughter of the man who was injured and was attacked by Swatantra Bharatwaj. She broke the internet with the information and got the attention of all the other political parties as well. Delhi police has acted and finally taken Swatantra into custody from his native village in Bulandshahr, Uttar Pradesh. So that's the big story developing at this hour. Himanshu Mishra joins us for more details on this story. Himanshu, what more do we know?
18: देखिए पुलिस ने जैसे ही यहाँ पर पहुंचे थे शिकायत लेकर के, और जो शिकायतें थी क्योंकि इसके पीछे का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्वतंत्र क्लेम्स करता हुआ नजर आ रहा था, और उसके बाद तमाम इसको लेकर के पॉलिटिकल रिएक्शन आने लगे थे। और जैसे ही सुबह निशु उसका अपने पिता और चंद्रशेखर आजाद जो सांसद है सभी लोग पहुंचे थे, और वहां पर जिन धाराओं को लेकर के बात हुई थी एससी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो ये तीनों धाराएं जैसे ही लगाने की बात आई थी वैसे ही पुलिस की एक टीम, क्योंकि ऐसी धाराएं जब भी लगी इनमें से एक भी धारा अगर लगती है तो अरेस्टिंग तुरंत होती है, ऐसे में पुलिस की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम को ये इंफॉर्मेशन मिली कि स्वतंत्र बुलंदशहर इलाके में है, तो पुलिस की टीम एक बुलंदशहर के लिए तुरंत निकल पड़ी थी और पुलिस ने उसे अब डिटेन कर लिया है, बुलंदशहर इलाके से ही डिटेन किया है। हालांकि पिछले कुछ समय से वो लोकेशन अपने चेंज कर रहा था लेकिन पुलिस लगातार उसे ट्रैक कर रही थी, लोकल पुलिस की भी मदद यहां पर ली जा रही थी और फिर पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया है, और अब जो दिल्ली पुलिस है लीगल कार्रवाई करते हुए उसे दिल्ली वापस पार्लियामेंट स्ट्रीट जो थाना है वहां पर लेकर के आएगी। जी
7: जी हिमांशु, देखिए एक बात क्लियर है कि पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया है, पर जो पूरा सवाल सुबह से चल रहा है वो सिर्फ उनके डिटेंशन और अरेस्ट का नहीं है, वो किन चार्जेस पर उन्हें अरेस्ट करा गया है उस पर भी है। क्या इस पर कोई क्लैरिटी मिल पाई है दिल्ली पुलिस से?
18: देखिए अभी धाराएं एफआईआर में ऐड नहीं की गई है, जो धाराएं ऐड होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एससी एसटी एक्ट, क्योंकि एससी एसटी एक्ट को लेकर के सहमति बन गई थी, ये बात दिन में भी क्लियर हो गई थी पुलिस सूत्रों के द्वारा, लेकिन जहां तक बात थी कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर 109 बीएनएस अटेम्प्ट टू मर्डर की बात थी, तो उसमें पुलिस का ये कहना था कि जो इंजरीज हैं उस पे जो अपडेटेड जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, क्योंकि अगर आप एफआईआर भी देखेंगे उस वक्त का तो उस वक्त एफआईआर में ये लिखा हुआ था कि जब डिटेल, क्योंकि एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो पहली मेडिकल रिपोर्ट भी आई जो तुरंत की उसके आधार पे थी, उसमें क्लियर लिखा था कि जब डिटेल एफआईआर जब मेडिकल की रिपोर्ट आएगी जब पूरी इंफॉर्मेशन होगी तो उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर तौर पर अगर यहां पर पुलिस को जानकारी मिलती है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हाँ जानलेवा हमला था, जानलेवा अटैक किया गया था, तो ऐसे में पुलिस 109 बीएनएस जोड़ेगी। साथ साथ पॉक्सो एक्ट की बात थी, लेकिन बताया जा रहा है कि चूंकि आप देखिए जब से ये वीडियोस वायरल हो रहे थे जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के, तो जो पीड़िता आई थी उसने कहा था कि उसको सोशल मीडिया पर लगातार धमकी दी जा रही है, तरह तरह की गालियां भी उसको लिखी जा रही है, तो इसको लेकर के उसने एक फ्रेश कंप्लेन भी फाइल की थी और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। तो ये एक अलग से कंप्लेन दी थी, जब हमने उससे अभी कुछ देर पहले बात की थी तो ये बात उसने क्लियर किया था कि एक फ्रेश कंप्लेन भी दी गई थी जो एफआईआर दर्ज है, उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल किया गया था, जो उसके लिए भाषा का इस्तेमाल किया गया था उसको लेकर के। लेकिन आप देखिए जिन धाराओं को ऐड करने की बात थी सुबह से ही, उनमें एससी एसटी एक्ट लगे, चाहे पॉक्सो का केस जुड़े या 109 बीएनएस अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगे, इन तीनों में तुरंत अरेस्टिंग बनती है। तो इसलिए पुलिस ने प्रिकॉशनरी अपनी एक टीम पहले ही निकाल दी थी और बाद में यही बात हुई कि एससी एसटी एक्ट को लेकर के सहमति बन रही है, और उसके बाद पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया और डिटेन करके उसको अब दिल्ली लाया जाएगा। जी
7: नहीं रहिएगा, आपके पास वापस आते हैं। तो हिमांशु दे टॉकिंग अबाउट हाउ द चार्जेस अंडर व्हिच ही इज बीन अरेस्टेड आर स्टिल नॉट क्लियर, बट व्हाट वी डू नो एट दिस पॉइंट इज दैट ही हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम हिज नेटिव विलेज इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम बुलंदशहर। अरविंद ओझा नाउ ऑल्सो हैज बीन ट्रैकिंग क्राइम फॉर अस जॉइंस अस फॉर मोर डिटेल्स ऑन द स्टोरी। अरविंद, हिमांशु की बात हुई थी, निशु से आपकी बात हुई थी, स्वतंत्र से ही, स्वतंत्र उस समय भी हंस रहे थे, अब कुछ मुस्कुराने वाली बात शायद नहीं रही उनके पास, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो पूरा मामला है ये अगर निशु जाके सोशल मीडिया पे ना लिखती, अगर अपनी पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ना बताती, अगर चंद्रशेखर आजाद नहीं कूदते इसमें, अगर राहुल गांधी ट्वीट नहीं करते, अगर सीजेपी आकर आज मंदिर मार्ग में पुलिस स्टेशन में प्रोटेस्ट नहीं करता, तो ये आदमी अभी भी फ्री होता।
19: देखिए फिलहाल इसे हिरासत में लिया गया है, डिटेन्ड किया गया है बुलंदशहर से, और इससे पूछताछ की जा रही है। आप अगर आपकी बात करें सुनल, तो ये जो लड़ाई है ये 20 जुलाई को जंतर मंतर पे हुई थी, FIR उस पर रजिस्टर्ड हुई थी, उसके बाद निशी के जो फादर है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, उसके आधार पर FIR दर्ज हुई थी, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर लड़ाई जारी थी, दोनों पक्ष बयानबाजी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि बयानबाजी नहीं कर रहे थे, निशु की तरफ से, उनके फादर की तरफ से बयानबाजी हो रही थी, जो स्वतंत्र भारद्वाज है उनकी तरफ से बयानबाजी हो रही थी। एक बयान में 24 जुलाई को निशु के फादर संजय आजाद ने बाकायदा वीडियो जारी किया जिसमें ये दावा किया है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गलती से उनको चोट लग गई, लेकिन अगर पुलिस नहीं आती तो स्वतंत्र भारद्वाज का क्या हल होता, वो तस्वीरें भी दिखाई है उन्होंने जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज को लोग पीट रहे हैं। उसके बाद इंडिया टुडे की टीम ने बातचीत की स्वतंत्र भारद्वाज से, स्वतंत्र भारद्वाज ये कहता हुआ दिखाई दिया कि डिफेंस में हमने अटैक किया, लेकिन उसके बाद जब एक वो इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट में उसने बड़े बड़े दावे किए जिसके बाद ये पूरा मामला तूल बना, और उसके बाद इंडिया टुडे ने ही सबसे पहले कन्फ्रंट किया स्वतंत्र भारद्वाज को, जिसमें उसने एक्सेप्ट किया कि उसने उसके घोड़े से चोट लगी थी उसके फादर को, इसको उसने डिनाई नहीं किया, और उसके बाद फिर सीजेपी और तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसके बाद दबाव बना, अभी स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, उसके बयान जो है वो भी देखे जा रहे हैं क्योंकि वो दावा कर रहा है कि उसके पास भी काफी वीडियो है जिसमें उसके साथ मारपीट की गई है, तो तमाम जो निशु के फादर ने एलिगेशन लगाए हैं उस चीज से उसको कन्फ्रंट किया जा रहा है।
7: जी अरविंद, और हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी इस बातचीत में। मैंने तो पूरा वो पॉडकास्ट सुना जिसमें वो बहुत अच्छे से अपना पूरा चिट्ठा खुद ही बता रहे हैं, तो हिमांशु क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहेंगे कि स्वतंत्र भारद्वाज आखिर हैं कौन जो क्लेम करते हैं कि कपिल मिश्रा उनके बड़े भाई हैं, जो क्लेम करते हैं कि चिराग पासवान उनके बड़े भाई हैं, जो क्लेम करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उनके बड़े भाई हैं, तो इनका खुद का पूरा हिस्ट्री बायोडाटा क्या है जरा वो बताएं।
8: देखिए जिस तरीके का ये पूरा पॉडकास्ट है उसको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, स्वतंत्र कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, ये पॉडकास्ट काफी हद तक ये इशारा करता है, क्योंकि जिस चीज को अब वो डिनाई कर रहे हैं उसको उन्होंने उस पॉडकास्ट में किस भाषा में कहा था वो समझा जा सकता है, और अब जब उन्होंने देखा कि वो मुसीबत में फंस सकते हैं और किस तरीके से उनके लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है, और FIR में अब वो धाराएं ऐड होंगी जिनसे बच पाना मुश्किल होगा, अरेस्टिंग भी होगी, तब उस भाषा बदली जरूर है। तो क्लेम्स की बात उसकी अपनी जगह है, उसके पीछे उसके क्या तथ्य हैं क्या दावे हैं ये नहीं समझा, वो तो वो स्वतंत्र ही बताएगा, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जब से ये पूरी पहुंची थी निशु और तमाम जो उनकी पूरी लीगल टीम पहुंची थी और जो कंप्लेन दिया गया था सोनल, उसमें क्लियर था कि SC ST एक्ट और 109 BNS यानी अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया जाए, क्योंकि जो दावे हैं वो खुद, क्योंकि जब चंद्रशेखर आजाद जब थाने से निकल कर बाहर आए तो पहला जो उनका शब्द था कि वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने किस तरीके से मारा, तो ऐसे में अब पुलिस कैसे इन धाराओं को नहीं जोड़ेगी अटेम्प्ट टू मर्डर का, तो ये जो धाराएं हैं इसमें तुरंत गिरफ्तारी बनती है, इसीलिए पुलिस टीम सुबह ही निकल गई थी, क्योंकि लोकेशन जब ट्रैक किया गया पता चला वो बुलंदशहर की तरफ है, और बुलंदशहर दिल्ली पुलिस की टीम चली गई, लोकल पुलिस बुलंदशहर पुलिस से दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया और उसको फिर अभी डिटेन कर लिया गया है। अब देखिए जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे चल रहा था, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस भी दिए जा रहे थे, जिसमें वीडियोस ये भी आया था जो कुछ देर पहले आज तक ने चलाया था कि किस तरीके से उसके कपड़े फटे हुए हैं वीडियो में, और उसको लेकर के जब अब से कुछ देर पहले मैंने संजय की बेटी निशु से उनसे जब मैंने पूछा ये सवाल कि उसके कपड़े कैसे फटे थे, तो उनका ये कहना था कि जहाँ पर ये सब कुछ हुआ मारपीट, जब उनके पिता अपनी बेटी का, संजय जब अपनी बेटी का वीडियो बना रहे थे तो उसने मोबाइल पर एकदम से अटैक किया, और फिर उसके बाद धक्का मुक्की में बगल में कूड़ा वूड़ा जैसी जगह थी, जो गंदी सी जगह थी वहाँ वो गिर गया और उसकी शर्ट वहाँ फट गई होती। लेकिन जो दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है संजय जी का, जिसमें वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी सबने सुना। तो ये कंट्रोवर्सी है। अब यहाँ पर पुलिस का रोल सोनल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले पुलिस ने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो फाइनल मेडिकल रिपोर्ट अब आएगी डॉक्टर से कंसल्ट करके कि इंजरीज कैसी थी, क्या अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है, क्योंकि सिर्फ पुलिस के लगा देने से, प्रेशर में लगा देने से, प्रेशर बना देने से कोई चीज साबित नहीं होती। अगर धारा एफआईआर में जुड़ भी जाती है तो आगे वो कोर्ट में,
20: ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैं ये अरविंद ओझा के पास भी लेकर जाना चाहती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अरविंद ओझा, क्या ये पॉसिबल है कि ये पूरे इंसिडेंट को तो करीब एक महीने से ज्यादा हो गया है, आप वापस जाके समय में कैसे दिखाएंगे कि किस तरह की इंजरीज हुई थी, किस तरह की नहीं हुई थी? निशु जो है, उनकी जो बेटी, संजय की बेटी है, वो बोल रही है उनको 7 टाके लगे। जो इनका वर्जन है, जो यू नो भारद्वाज का, स्वतंत्र भारद्वाज का वर्जन है, उनके हिसाब से कुछ खरोच आई थी। उनका जो क्लेम है पॉडकास्ट में कि मैंने तो उनका सर फोड़ दिया, तो इन सब में सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चलेगा?
21: देखिए, आप सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो आपने हिमांशु ही पूछा था कि वो बड़े बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री को अपना भाई कह रहा है, तो उसमें तो कोई नहीं, कोई ट्रंप को भी अपना भाई कह सकता है, वो कहने को कोई स्वतंत्र है कहने के लिए कुछ भी, वो बात नहीं है। बात एविडेंस पर जाती है। दिल्ली पुलिस की टीम, जब संजय आजाद के साथ मारपीट हुई तो दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, जो सेंट्रल दिल्ली इलाके में है, उनका वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन में सर पर कुछ कटे के निशान पाए गए, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, एमएलसी होती है, कोई भी पुलिस, आप भी जानते होंगे, कोई केस बनता है तो उसके पहले मेडिकल उसकी रिपोर्ट बनती है, उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फिक्सन लगाए गए और उसके बाद फिर उसे डिटेन किया गया, इंट्रोगेट।
20: वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, डिटेल रिपोर्ट नहीं थी।
21: हाँ, उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन झगड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा था। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर, क्योंकि दोनों ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जहां एक तरफ ये दावा कर रहा था स्वतंत्र भारत कि उसने पीट दिया, 7 टाके है, तो निशु के फादर का भी वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस नहीं आती तो क्या हाल होता, उसमें स्वतंत्र भारत का फोटो लगा हुआ है, ये नहीं भूलना चाहिए, फोटो दिखा कर करें क्या हालत होता, ये हम आपको बताते। तो दावे दोनों तरफ से अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत का जब ये स्वतंत्र भारत भारद्वाज का जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद काफी माहौल बना, मामला सियासी तूल भी पकड़ा, उसके बाद पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पे गई है। तो अभी जो सबके दावे हैं, सबके वीडियो को दिल्ली पुलिस कंपाइल करेगी, दोबारा संजय आजाद है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, तो जो तथ्य होंगे, जो रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। और दिल्ली पुलिस ने आश्वासन भी दिया है निशु को और उनके फादर को और तमाम नेताओं को कि सख्त एक्शन लेंगे और जो स्वतंत्र भारतवाद है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
20: जी, हिमांशु पर वापस जाते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं। हिमांशु, अगर मान लीजिए कि मेडिकल रिपोर्ट में डिटेल्स में इतने एविडेंस ना आ पाए कि अटेम्प्ट टू मर्डर लग पाए, SC/ST एक्ट लगने की जो बातचीत हुई है, जिसके बारे में काफी दबाव भी पड़ रहा होगा इसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर, चंद्रशेखर आजाद खुद है वहां पर, CJP है, राहुल गांधी ने बात करी है, तो इन सारे लोगों के बात करने के बाद अगर ये धाराएं एक्ट लगाई जाती हैं, ऐड करी जाती हैं, जो 72 आवर्स का समय दिया गया है उनको, तो उसके अंतर्गत भी अरेस्ट हो सकते हैं जिसमें इनको बेल नहीं मिलेगी, क्या ये कहना सही होगा?
8: बिल्कुल बिल्कुल सोनल, तीनों में से कोई भी धारा लग जाए, पॉक्सो एक्ट लग जाए, चाहे SC/ST एक्ट लग जाए, या फिर 109 BNS अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाए, इन तीनों में अरेस्टिंग हो जाती है। अब उसके बाद अरेस्टिंग के बाद, अब फिर जाहिर सी बात है, अब कोर्ट का ही रास्ता बचता है, तो कोई भी धारा लगेगी, ये नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, इसमें अरेस्टिंग तुरंत बनती है। तो इसीलिए पुलिस ने प्रिकॉशनरी, आप देखिए दिल्ली पुलिस ने, जैसे पुलिस को जब ये लगा कि ये धाराएं जब वहां पे पहुंचे और जो कंडीशन थी और जो खुद स्वतंत्र का वीडियो वायरल था, तो उसके बाद पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद उसको डिटेन कर लिया गया है। अब यहां पर आगे की कार्रवाई चल रही है, कवायद चल रही है, जाहिर तौर पर यह FIR 1 महीने पहले दर्ज हुई थी, तो अब इस FIR में कुछ ऐड करने के लिए, कुछ नई चीज जोड़ने के लिए, नए सेक्शन जोड़ने के लिए, पुलिस को उसके लिए एविडेंस, फ्रेश एविडेंस दिखाने होंगे, और उसके बाद जो एप्लीकेशन है, जो शिकायत है, उसके आधार पर पुलिस इसमें एक एप्लीकेशन बनाएगी और कोर्ट में सबमिट करते हुए उस धारा को FIR के अंदर ऐड करेगी, और जब चार्जशीट करेगी तो जो फ्रेश,
20: मुझे एक और बात बताइए, मैं आपकी बात काट, मैं आपको थोड़ा रोक रही हूँ, क्योंकि मैं ना स्वतंत्र भारद्वाज की हिस्ट्री में थोड़ा जाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में खुद ही जो बताया, एक तो हो गया ब्रैग करना कि भाई मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, ये दिल्ली में सबको ही बोलते हैं, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही बोलते हैं शायद, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वो तो फिर अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी या लीडर्स खुद आके क्लैरिफाई करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये अपनी हिस्ट्री जब बता रहे थे उस पॉडकास्ट में, वो बताते हैं कि कैसे वो एक स्टूडेंट यूनियन से शुरू हुए थे, देन ही इज एक्सट्रीमली इस्लामोफोबिक, ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ ही टेक्स प्राइड इन इट, ही इज टॉकिंग अबाउट इवेंट्स एंड प्रोटेस्ट दैट ही इज पार्टिसिपेटेड इन द पास्ट, he talks about how it's his language, it's his radical behavior that has given him this limelight that he really enjoys as well. So this is a confession. aur agar ye court of law mein nahi hua hai, agar ye camera par hua hai, to kya ye evidence banega court mein inke against?
8: dekhiye sonal, jo injuries hai और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस स्पॉट से मिलेंगे वो महत्वपूर्ण होते हैं, किसी के कुछ कहने से, कहीं किसी के किसी पॉडकास्ट में, स्वतंत्र पॉडकास्ट में बैठ के स्वतंत्र कुछ भी बोल देने के लिए। लेकिन जो एविडेंस कहेंगे, जो मौकाए वारदात के जो वीडियो वायरल हैं, वो जो वहाँ पर सबूत जो बोलेंगे, और इसके बाद जो इंजरीज बोलेगी, इंजरीज मेडिकल रिपोर्ट, जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जिसको कहते हैं, कार्रवाई उसी आधार पर होगी। क्योंकि पुलिस सिर्फ एफआईआर दर्ज करके चार्जशीट दाखिल करती है, सजा देना उन सबूतों में या उन चोट में कितना गहराई है ये कोर्ट में ही तय होता है। तो पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना, और इसीलिए पुलिस कोई भी धारा जोड़ने से पहले कोशिश करती है कि उससे जुड़े तमाम एविडेंस हो, ताकि जो उसका केस है वो कोर्ट में टिक सके। और यहां पर आप देखिए कि पुलिस का ये दावा था कि जो चोट है वो इतनी चोट थी जो कड़े से लगी थी, जिसकी वजह से जो पुराना 323 था, यानी मारपीट धक्का मुक्की में जो चोट लगती है वो चोट लगी थी, जानबूझ के धक्का मार कर किसी को।
20: But the counter to that is what Nishu is saying, right? The counter to that is what Nishu is saying, that was just a preliminary report and they did not get all the details over there. So Arvind Ojha and Himanshu, both thank you so much for joining us. It is indeed a curious case, but like I said, this is the one that really unfolded online and now is finding its feet inside the police station as well. Let's see where this one goes. Swatantra Bharatwaj is now under arrest. We'll see what charges are finally fixed against him. That's all we could pack him in today's show. Thanks so much for watching. Stay tuned to India Today. Lots more coming up.

0: एडुकेटिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Swatantra Bharatwaj, because Nishu Azad, her family, they are Dalit. So that was also brought in. CJP has in fact been protesting in the police station earlier today, demanding that there be action and that Swatantra be arrested, which is exactly what's taken place now. I'll bring in Arvind Oja for more details on this, as well as Himanshu for the latest updates. Arvind, we'll come across to you first on what's really happening right now. Which sections have been invoked by the Delhi police? Or kya abhi Delhi police Swatantra ko lekar aa rahe hai Delhi tak?
1: देखिए, जो सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि जो स्वतंत्र भारद्वाज है, उसको दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और उससे पूछताछ की जा रही है. जो स्टेटमेंट निशु और उसके फादर ने दिया, उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है. साथ ही साथ इस मामले में मल्टीपल वीडियोस सामने आ रहे हैं. कुछ वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्र के साथ भी मारपीट की जा रही है, नंबर एक. नंबर दो, एक वीडियो है जिसमें संजय आजाद खुद कहते हुए सुनाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, उसमें स्वतंत्र की पिक्चर लगाई हुई है कि उसको स्वतंत्र को उन्होंने किस तरह से मारा और अगर पुलिस नहीं आती तो उनको बुरा हाल करते. वहीं दूसरी तरफ एक पॉडकास्ट में स्वतंत्र ने यह दावा किया कि निशु के फादर को इतना मारा कि 60 टाके आए और उसके तमाम बड़े नेताओं के साथ रिलेशन है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता और किसी वजह से नहीं लगा. तो ये तमाम अलग अलग मल्टीपल दावे हैं. वहीं इन सब के बीच जब पॉडकास्ट का वीडियो वायरल हुआ तो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में सीजेपी के लीडर्स, भीम आर्मी के लीडर्स, वो तमाम लोग, निशु के फादर वो पहुंचे, दिल्ली पुलिस से SC ST एक्ट लगाने की डिमांड की. वहीं दिल्ली पुलिस भी अब बयानों के आधार पर एक्शन में आई है. जो स्वतंत्र है उसको डिटेन किया है, उसको इंट्रोगेट कर रही है, काफी चीजें वेरीफाई करनी है. जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो चीजें वेरीफाई कर रही है. जी
0: ओके, लेट मी ब्रिंग इन हिमांशु आल्सो फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस. हिमांशु, एक डिमांड था अरेस्ट के लिए, दूसरा टू बुक हिम अंडर SC ST एक्ट, क्या वो भी हो रहा है?
2: बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो तीन धाराओं की मांग की गई थी उसमें एक SC ST एक्ट था, दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर का था जो 109 BNS है और पॉक्सो एक्ट की बात थी. लेकिन जो हमारी बात हुई है कि पुलिस फिलहाल जो SC ST एक्ट है वो लगाने की तैयारी में है, लेकिन बाकी जो अटेम्प्ट टू मर्डर है उसके लिए जब डॉक्टर की डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि जो पहली FIR दर्ज हुई थी जो इसमें और जो धाराएं लगाई गई थी वो जो चोट की जो गंभीरता थी उसको देखते हुए उन धाराओं को जोड़ा गया था. तो अटेम्प्ट टू मर्डर तब तक पुलिस नहीं इसमें इन्वोक करेगी जब तक कि डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट उनको नहीं मिलती. डॉक्टर का ये कहना नहीं होता कि हाँ जो चोट है उससे जान जा सकती थी और दूसरी चीज जिसको मारा गया, जिस चीज से चोट लगी है वो जानबूझकर मारा गया और वो हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये तमाम चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि पुलिस कोई भी अगर धारा FIR में जोड़ती है तो उसके साथ उसको एविडेंस भी कलेक्ट करने होते हैं और एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में अपने केस को स्टैंड भी कराना होता है. तो यहाँ पर उन धाराओं को ही लेकर के पुलिस फिलहाल आगे बढ़ेगी जिनसे जुड़े एविडेंस यहाँ पर पुलिस के हाथ में लगते हैं, इन्वेस्टिगेशन में लगते हैं. जो सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, उससे पुलिस की जो पूरी लीगल प्रोसीजर है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है. पुलिस जो एविडेंस मिलेंगे उसके आधार पर आगे चलेगी. जो हमारी अभी बात हुई है तो SC ST एक्ट, क्योंकि इसकी डिमांड अगर आप देखें तो शुरुआत से थी, तो SC ST एक्ट इन्वोक करने की बात है और ये धारा नॉन वेनेबल है. तो ऐसे में कहीं जब ये धारा जुड़े और उसके बाद स्वतंत्र हाथ से निकल ना जाए, तो इसलिए पुलिस ने पहले ही जो हमारी जानकारी मिली कि उसको डिटेन कर लिया ताकि जब धारा जुड़े तो उसके बाद आगे की कार्रवाई, जो पूरा लीगल प्रोसीजर है इसमें बढ़ाया जा सके. तो फिलहाल ये है कंडीशन. अब आगे जब डॉक्टर से बात होगी और इसके बाद जब दूसरे वीडियोस जो वायरल है उनको वेरीफाई किया जाएगा तब पुलिस इसमें अगला स्टैंड लेगी.
0: Okay, Himanshu and Arvind, thanks for those details. As we speak right now, the accused Swatantra Bharatwaj is being brought to Delhi, and that's where you will see more movement, more details of what kind of action will be taken against him. For now, he's been detained, will be formally arrested once in the national capital. And in the now viral video of Swatantra Bharatwaj,

0: that triggered this entire controversy. He boasted of backing from several NDA leaders, including that of Union Minister Chirag Paswan. Chirag Paswan has now clarified on the same, claiming he has absolutely no link with the right-wing activist and saying that essentially his name was misused by the podcaster, by the influencer. The union minister speaking out has also backed demands for stricter action against Swatantra Bharadwaj. Remember, in this video, Swatantra Bharadwaj spoke not just of how he assaulted, but also claimed that he had the backing of BJP leaders who would ensure that he's not taken into custody. One of the names he mentioned was that of Chirag Paswan.
1: इस बात को खुलेआम पॉडकास्ट पे कबूल करना और उसके बाद भी अगर उस पे कार्रवाई नहीं होगी तो मैं मानता हूं कि ये बहुत गलत उदाहरण देश और जनता के सामने जाएगा। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए और क्योंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के साथ साथ मेरे भी नाम का मिसयूज करने का काम किया है, ऐसे में मैंने अधिकृत शिकायत भी उस व्यक्ति के खिलाफ की है।
0: And India Today also spoke to Swatantra Bharadwaj before his arrest when there was peak outrage last night. And guess what? The influencer played the victim card. He said he acted in self-defense because CJP protesters, according to him, were trying to lynch him. Here's his version.
2: Swatantra Bharadwaj ji, aapka ek video social media par tezi se viral ho raha hai. Usme aap kisi ka सर फाड़ने की बात कर रहे हैं, किसी लड़की के पिता का सर फाड़ने की बात कर रहे हैं। पहले तो आप बताइए उसमें आप बात क्या कर रहे हैं, आपने तो खुद देखा होगा वीडियो, बताइए जरा।
3: मेरे तरफ से स्टेटमेंट ये था कि एक लड़की नीसू जिसके पापा का सर फटा था मेरे द्वारा, ऐसा वो लोग कह रहे थे, मेरे कड़े से लगा था। तो उन लोगों की तरफ से ये बात कहा जा रहा था कि अगर मेरे पापा को इंसाफ नहीं मिला तो हम जहर खा के मर जाएंगे। तो प्रशासन के द्वारा हमको, मेरे ऊपर लगना चाहिए था 307 क्योंकि स्टिचेस आया हुआ था। लेकिन वहां पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, कपिल मिश्रा जी, चिराग पासवान जी, ये सारे अपने बड़े भाई, और रही बात हम जो बचे, वो बचने का सिर्फ एक ही कारण है, हनुमान जी का आशीर्वाद था, क्योंकि हमको फंसाया जा रहा था।
2: फोन कॉल से आप बचे?
3: नहीं, ऐसा तो हम कहीं बोले ही नहीं, आप सर ढंग से वीडियो नहीं देखा, ऐसा हम कहीं नहीं बोले कि फोन कॉल आया था।
2: तो लोग तो सोशल मीडिया पे यही प्रचारित कर रहे हैं,
3: लोग बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब आप कह सकते हैं, ब्राह्मण होने के नाते कह सकते हैं कि ब्राह्मण की वजह से मेरे पीछे पड़े हैं, या फिर जो हम अभी आरक्षण वाला मुद्दा उठाया है, आर्थिक आरक्षण भारत में लागू करवाना है, इसकी वजह से पीछे पड़े हैं, या फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर, या जो भी ग्राउंड लेवल पे जो भी वर्क कर रहे हैं, गौरक्षा हो, इन चीजों को लेकर लोग टारगेट कर रहे हैं।
2: स्वतंत्र जी करते क्या है?
3: हम स्टूडेंट भी है और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर भी है, और साथ में जब भी हम लोग को टाइम मिलता है, जितना भी बन पाता है, गौ सेवा भी करते हैं, गौरक्षा भी करते हैं। और कोई अगर सनातन के विरुद्ध कुछ बयानबाजी मेरे सामने करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रधानमंत्री किसी को भी अगर गाली गलौज करता है, तो सबका अपना अपना तरीका है। संविधान के दायरे में जितना एक्ट लगना चाहिए, जितना मुकदमा करवाना चाहिए, उतना करवाते भी है। कल भी सोडा भास्कर के खिलाफ भी कंप्लेन डाला गया है हमारे ही भाइयों के द्वारा पार्लियामेंट थाना में ही, तो ऐसा भी कार्य करता है। लेकिन अगर कहीं कुछ होता नहीं है, अगर कोई उमर खालिद का मेरे सामने समर्थन करता है, तो उसको उसी तरीके से समझाया भी जाता है।
2: किस तरीके से? ऐसे ही सर फाड़ के?
3: सर तो आप पता नहीं उन लोग का कैसे फट जाता है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी सर फटने का कहीं भी ऐसा कुछ आया नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट तो झूठ नहीं होगा। ये लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी मेरे बारे में पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब भारत के अंदर मेरे ऊपर इतना अटैक होने का संभावना बना, तब राहुल गांधी हमको जानते भी नहीं थे। तो आप समझ लीजिए, जिस तरीके से जितने विपक्ष के नेता मेरे पीछे पड़े हैं ना, ये लोग कहीं ना कहीं एक आवाज दबाना चाहते हैं।
2: तो भाई पीछे इसलिए पड़े क्योंकि आप तो हंस हंस के बोल रहे हैं कि हमने सर साठ टाके लगे, सर फाड़ दिया, लड़की इंसाफ की बात कर रही थी, फोन कॉल आया, मुझ पे 307 लगना था लेकिन मुझे छोड़ दिया गया। बड़े प्राउडली आप बोल रहे हैं बात को।
3: सर देखिए, भारत में ना हंसना गुना नहीं है, और अगर कोई आदमी संविधान, अगर आपको ये लगता हो कि संविधान अगर आपके लिए है, तो उतना ही संविधान मेरे लिए भी है। जब मेरे ऊपर कुछ बात आता है, मेरा जब सर अलग करने का बात किया जाता है, तब क्यों नहीं किसी का पोस्ट आता है? आज अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई मेरे बड़े भाई है, ये बोलना गुनाह कहाँ से हो गया? कोई भी कुछ बोल देता है। अगर मीडिया में लोग, अभी स्वरा भास्कर हमारी पद्मावती, हमारी कर्णावती, सारे लोगों का अपमान की जो भी जौहर करती है, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और हम अगर भाई बोल दिए तो मेरे ऊपर इतना बड़ा एक्शन हो रहा है।
2: मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है स्वतंत्र जी, कि सीजेपी उसके आंदोलन में जहां आप ये बोल रहे हैं कि उनकी मांगे सही थी, ऐसा क्या कर रहे थे आपकी आपके ऊपर टूट पड़े सब?
3: हम वहां पे शांति से खड़े थे, वो पूरा सोशल मीडिया वीडियोस है, कुछ भी नहीं कर रहे थे हम शांति से वहां खड़े थे। मेरा एक वीडियो बनाया जा रहा था वही नीशू के बाप के द्वारा, जिसमें वीडियो में पता नहीं हमको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। वो मेरा वीडियो एक्चुअली क्या है कि देखिए हम इन्फ्लुएंसर है, मेरा भी कुछ छवि है अपना, हो सकता है वो जानते हो, क्योंकि हम तो जानते नहीं थे। बाद में हमको पता चला कि उसकी जो बेटी है वो मेरे विरुद्ध कई सारा रोस्टिंग वीडियो बना चुकी है, पहले बहुत पहले सीजेपी प्रोटेस्ट से भी पहले, हम नहीं जानते थे किसी को। अब वो सुअर वगैरह कुछ कुछ बोल बोल के ये लोग गोदी मीडिया, आज तक के आप लोग जैसे रिपोर्टर भी गए थे वहां पे, कई सारे डिजिटल मीडिया भी गए थे, पत्रकार के ऊपर हमला करने का ये लोग कोशिश किए, गोदी मीडिया कर करके सारे लोगों को ये लोग भगाए। एक एबीपी न्यूज के पत्रकार थे, उनको टॉर्चर किया गया। तो मेरा भी ये लोग ऐसा ही करना चाह रहे थे कि इसको ऐसे ही बेइज्जती करके भगाओ। हम वो चीज बर्दाश्त नहीं सकते सर, क्योंकि हम लोग का एक अपना छवि है, और ऐसा छवि है ना कि हम लोग थोड़ा अलग लेके चलते हैं सिस्टम। आज की डेट में अगर मेरा कोई वीडियो सामने से बना रहा है मेरे विदाउट परमिशन कि तुम सुअर हो ऐसे करके, तो हम तो कैमरा बस बंद करवाने गए थे। लेकिन जिस तरीके से मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो अपने सेल्फ डिफेंस में जो बनता था हम वो किए, जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई बनता था वो प्रशासन कार्रवाई किया। ऐसा नहीं है प्रशासन अपना कार्रवाई नहीं किया, 41A सीआरपीसी कई सारा धारा वाड़ा बहुत सारा चीज है, कई सारी चीजों के द्वारा छोड़ा गया और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर हम गलत पाए जाएंगे, पुलिस अगर कोऑर्डिनेट करने के लिए बुलाता है इन्वेस्टिगेशन में, अगर प्रशासन की नजर में हम गलत दिखेंगे, तो हम वो शख्स है कि हम लोग बीएन राव जी का संविधान पढ़े हुए हैं, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अगर प्रशासन की तरफ से आगे से अप्रोच आता है कि आप गलत किए हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो प्रशासन को मेरे घर नहीं आना पड़ेगा, हम खुद ही प्रशासन के पास जाके अपना गिरफ्तारी देने का काम करेंगे।
0: You've heard one side. Essentially, what does this come down to? Two influencers who've been fighting it out. And one of them is Swatantra Bhardwaj, who's now been detained. The other, Nishu Azad, whose father was beaten up. She spoke to India Today after she and CJP representatives who've backed her in this fight met with the Delhi police officials. Listen in to what they said. Mind you that this was a conversation we had before he was taken into custody.
4: बताइए, जब आप थाने पहुंची तो आप लोगों की मेन डिमांड क्या थी, क्या रिटर्न में लिख के ले गए थे?
5: देखिए, हमारी डिमांड ये थी कि जो अब तक पुलिस जिसको डिले करते आ रही थी, जिस चीज पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्रिमिनल के अगेंस्ट जिसने पापा के ऊपर हमला किया, उनका सर फोड़ा, तो हमारी मांगे ये थी कि आप उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए। वो खुलेआम घूम रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है और कितना प्राउडली अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारी मांगे यही थी कि आप इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए, ऐसे लोग खुलेआम नहीं घूमने चाहिए। ये कब हम पर हमला कर दें और लोगों पर हमला कर दें, कुछ पता नहीं।
4: कितनी देर तक थाने में थे और क्या कोई रिटर्न कंप्लेन आप लोगों की ओर से अब फ्रेश दी गई है?
5: हाँ, हमने आज एक फ्रेश कंप्लेन दी थी, जो कि जो भी लोग मेरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे मेरे डीएम्स में और कमेंट सेक्शन में, मेरे गंदे गंदे स्टिकर्स बना रहे थे, मेरे को रेप थ्रेट्स दे रहे थे, इन सब के अगेंस्ट आज हमने फ्रेश कंप्लेन फाइल की है।
4: वो सेपरेट एफआईआर के लिए, लेकिन जो एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है उसमें कौन कौन से सेक्शंस ऐड करने की डिमांड की और पुलिस ने क्या कुछ कहा?
5: देखिए, जिस तरीके से उस व्यक्ति ने हरकतें की थी, अपना एक घटना को अंजाम दिया था, उस हिसाब से उसके ऊपर 307 हाफ मर्डर का केस और SC ST एक्ट ये सब लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हमने इस FIR के अंदर पुलिस से मांग की कि आप इसके अंदर हाफ मर्डर, SC ST एक्ट और 307 की धारा लगाइए।
4: पुलिस ने क्या कहा?
5: उन्होंने हमें आश्वासन दिया है बिल्कुल ऐसा होगा और जरूर होगा और 72 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और 7 दिनों के अंदर इसका इस जो भी केस है इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी।
4: 7 दिनों का टाइम पुलिस ने दिया। ये बताइए कि क्या जो दूसरी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे आपको थ्रेट दिया जा रहा है, तो क्या उसकी एक सेपरेट FIR की मांग की गई आपकी तरफ?
5: मांग भी की गई थी और आज हमने उनको रिटर्न दे भी दी, फाइल कंप्लेन करवा दिया हमने।
4: उस दिन को अगर आप याद करेंगे जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, मारपीट हुई थी, आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं क्या हुआ था?
5: ऑलमोस्ट सबको ही बताया। एक्चुअल में मैं और मेरे फादर प्रोटेस्ट में गए हुए थे और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो शायद उनको मेरे थॉट्स नहीं पसंद थे, तो वो मेरे को शायद पहले से जानते थे। तो मैं और मेरे भाई एक हम एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे थे तो कुछ लोग हमें कंटिन्यू घूर रहे थे, जिसमें से वही लोग थे जिन्होंने पापा के ऊपर हमला किया। तो पापा मेरे पास आए एंड उन्होंने बोला कि चलो कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं। मैंने मना कर दिया, तो पापा आगे गए और उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और पापा ने मेरी तरफ एंगल किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं, बल्कि पापा उन्हें जानते भी नहीं थे। तो उन्होंने उसी टाइम पापा के कैमरे पे हाथ मारा और पापा के साथ झटपट की। उतने में ही पुलिस ने देखा, उन्होंने पुलिस ने पापा को पकड़ा तो स्वतंत्र ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए पापा के सर पर अपने हाथ पे जो उसने एक धारेदार हथियार पहन रखा था वो पापा के सर पे मार दिया, जिससे पापा की ब्लीडिंग हुई और उनके साथ टाके आए।
4: सात टाके?
5: यस।
4: तो उस वक्त जब आप लोग थाने आए थे तो क्या कंप्लेन हुई थी और क्या उस वक्त आप सेटिस्फाई थे, आपने पुलिस से बोला?
5: नहीं, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि पुलिस हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे क्रिमिनल हमें और विक्टिम वो है।
0: Now, this took a political turn as well. You had several political parties going ahead and speaking out against Swatantra Bharadwaj, raising questions about how he claimed he had backing also from several leaders of the Bharatiya Janata Party, many of whom have come out to completely deny any link to him whatsoever. But earlier, my colleague Maria Shakil also spoke to Ashutosh Ranka after the CJP leadership staged a protest outside the Parliament Street Police Station demanding Swatantra's arrest, which has now happened.
6: And joining me now is Ashutosh Ranka, CJP co-convener. Ashutosh perhaps is still at the Parliament Street Police Station. Ashutosh, you went to the Parliament Street Police Station today demanding an attempt to murder case against Bhardwaj. The DCP has already said that the injury was simple in nature, from a kada, not a weapon. Did the police give you anything today beyond that same line?
2: Maria, this is the first time in my life when I'm hearing that the criminal himself, the goon himself, is saying that it was an attempt to murder case. He should have been arrested in attempt to murder case. He almost killed Sanjay ji. And then there is police, which is actually saying, no. It was only minor injury. This is the first time in my life when I'm hearing a goon actually telling what happened and police defending the goon. It's ridiculous. It's extremely unacceptable. If this is the state of affairs in the national capital, I can't even imagine what's happening throughout the country.
6: So tell me what really played out, because you were also joined by Chandrasekhar Azad today. There are reports suggesting that the SC-ST charges could be invoked and also attempt to murder. But that's a subject of consideration. What did the cops tell you?
2: So it's not a subject of consideration anymore. We left the station only after the additional DCP assured that there will be charges of SCST Act and attempt to murder sections added to the FIR, and the updated FIR would be shared with us by the evening.
6: Okay.
2: That's the reason why we actually left the station in the first place. And if that is not honored, we'll go back again.
6: So you are saying that there were verbal assurances that came in from the police that it will be added by the end of the day?
2: Yes. Yes.
6: Okay. Ashutosh, you know, a section of the right wing is of the opinion that this was some kind of bragging by Swatantra Bhardwaj and that there is no truth in it. Swatantra Bhardwaj himself later has said that that there is no political patronage whatsoever. How do you look at this entire controversy playing out there?
2: Again, Maria, this is the first time in my life where the goon is accepting ki maine ye kiya hai, and then their patrons are saying, nahin, isne itna nahin kiya hai. What kind of mockery of democracy is this? Like, we have, this guy has on record admitted multiple times that he begged Sanjay ji with that kada. He has admitted it multiple times. He's a known convict. He's a known criminal. He's a history cheater. There are so many of his videos and images of him beating people up in the past as well. And then if you're trying to defend that he was just bragging, who are you kidding? This is like what we are seeing right now in Delhi. It's extremely worrisome. And if Kapil Mishra was not involved, he should come out in the open and say that no, he was not involved in this at all. He should give a clarification. And then Swatantra should be made to submit all the evidence which suggested that Kapil Mishra was the one who called him up, who called the police up. Delhi police, we went to Delhi police,
7: बिकॉज स्वतंत्र ब्रैड की मेरे को तो उस दिन ही भी छोड़ दिया था, मैं रात को बाहर घूम रहा था एंड दी अकाउंट दिल्ली पुलिस हैड गिवन अस दैट डे इटसेल्फ व्हेन मी एंड सौरभ वेंट इमीडिएटली आफ्टर द इंसिडेंट दे सेड दे हैड डिटेन्ड हिम. वी आस्क्ड फॉर द डिटेल्स ऑफ डिटेनमेंट कि आपने अगर डिटेन किया था तो डिटेल शेयर कीजिए. दिस इज नॉट इवन यू डोंट नीड इट टू बी अ हियरसे. These are facts. Either he was detained or he was not detained. Delhi police detained him the other day. They should share the records. Otherwise, what Swatantra is saying is true.
6: Okay. So, Ashutosh, what will you be telling those who are saying that by bringing in the SCST charge, you are doing caste politics?
7: For them, I would just say that they have probably not seen Instagram videos of what this guy does. He is openly casteist. One of his video openly talks about ki maine ek neele kabutar ko maar maar ke lal kar diya. Anyone who doesn't understand what this means, either they lack basic sense or they haven't seen this video in the first place.
6: Okay, Ashutosh, you know, this is coming on a day that Indian Express, in its investigation, has said that they found list Delhi police submitted claiming 2,873 criminals were there at Jantar Mantar based on facial recognition can be flawed as 25 names which Express checked were in the jails. So, you know, Express investigation essentially pointing out that there were several protesters flagged with serious charges by Delhi police's own facial recognition system at Jantar Mantar. At least 25 were already supposed to be in jail. Given that, how much of weight can you place on any assurance the same police force gave you today?
7: A couple of things. Number one, we still haven't had any access to those 2,800 police keeps talking about. So I can't say much about it. What I do know is that all the FIRs against the student protesters were quashed by the Supreme Court. And if Delhi police even remotely attempts to not honor that agreement, this is a complete collapse of law and order and the idea of state in the first place, number one. Number two, you are absolutely right. The way Delhi police has behaved in the last 2-3 months makes us be very wary of their trust, of all the assurances that they give. And that is why all of us are in Delhi, we'll continue to stay put. And if they don't honor what they have assured, we will go back to the police station very soon.
6: You know, you continue to make this charge that the Delhi police is working at the behest of the BJP. You continue to accuse the Delhi police of acting at the behest of the BJP.
7: I didn't say this. Swatantra said this on record. I didn't say this. Maine nahi bola ki Kapil Mishra ne chudwaya. Swatantra said this on record. It's all out in the public.
6: So do you think, Ashutosh, that with that video and the podcast, it's almost like an open and shut case now? Because this is about political patronage that a criminal is, bragging.
7: It was an open and shut case 2 months ago. It was an open and shut case 2 months ago. We are 2 months too late. If people like Swatantra continue to worry, we'll all have to assume that there is no police in the capital. There's no law and order left in the capital. This cannot be a police which serves the people. It is a police of BJP. It is the police of BJP. And that will have to be officially accepted by them. They should, if they still can't arrest him after all that has been said, after all that has been viewed by people across the country, Sachin Sharma, the current DCP, should just go to the BJP headquarters and join BJP. He should make it very clear and official.
6: You know, the turn of events is such that it took a viral clip, not an FIR, to get any movement in an incident which happened 6 weeks ago.
7: And it's shameful. It's beyond shameful. What has Delhi police been doing all this while? If the opposition leader has to go to a police station just to get an FIR lodged, if a national movement has to constantly go to the police station for the police to act and demand action, if a sitting MP, Chandrasekhar ji, was there had to come to the police station to ensure that justice is given. I can't even imagine how.
6: All right, Ashutosh, I believe you're getting a call there. So Ashutosh Ranka there, thank you for joining us.
0: With that, I'm slipping into a short break here on To The Point. Coming up on the other side is an India Today exclusive with U.S. Ambassador to India, Sergio Gore, speaking out on the Modi-Trump relationship and the big question over the trade deal. That exclusive coming up in just a minute.

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करता। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: solution through dialogue that the court also attempted possible? Or since it's a title suit, both sides, and you tell me about your side, sir, there should be a verdict from courts of law so that it's strictly enforceable.
1: See, Gaurav, we have to understand that dialogue is possible where we are ready to give something. Now, I ask a question to myself and all your viewers, whether this 13.37 acres of land, do Vishnu Shankar Jain or my senior Hari Shankar Jain or anyone from the community, do they have the authority to give even an inch of land, of the land which belongs to the deity, of the land which belongs to Lord Krishna? So suppose even if I sit in the on the table of dialogue, see, even if I sit on the table of compromise, what do I have to offer? I cannot offer anything. Not even an inch of land I can offer. So therefore, in this case, dialogue is not possible at all. And the only resolution is by a judgment of the Honorable Court. We are very, very confident that when we'll place our evidence before the Honorable High Court, we will definitely win our case. And this entire 13.37 acres of land will be given to Lord Krishna Virajman.
0: Fair enough. But if we were to talk about evidence, courts go by evidence. Is there evidence in public domain so that people at large know that this place, this 13.37 acres of land, belongs to Bhagwan Shri Krishna Virajman or Krishna Lala Virajman, and that this land belongs to the temple? Give us points to prove your case, sir.
1: See, let me tell you that before demolition, last time this temple was demolished in 1670. Before that also, this temple was demolished in the past by various Islamic invaders and barbarians. Two times prior to 1670, this temple was demolished. But lastly, it was demolished in 1670. And the first proof of demolition we get is in Majlis-e-Alamgiri, which has been translated by Jaduna Sarkar, wherein it has been mentioned that there was a lofty grand temple of Lord Krishna which was standing at the site in question. And Aurangzeb demolished the temple and ordered that the the idols which are there, they should be buried under the steps of the mosque, and his order was carried upon. The second most strong proof which we get is that there was battle of Govardhan which happened in 1770. The Marathas took over this entire area. They kicked out all the encroachments which was happening at the site in question, and ultimately the British government, the third proof is that the British government auctioned this land. 13.37 acres of land was auctioned by British government, and Raja Patnimal of Banaras purchased this land in auction from the British government in 1815. That is the third most important proof. The fourth most important proof is the evidence that Raja Patnimal's successor transferred this entire 13.37 acres of land to Pandit Madan Mohan Malviya for creation of a lofty temple, and ultimately Shri Krishna Janmabhoomi Trust was created in 1950-1951 with an aim and objective that a lofty Krishna Janmabhoomi temple will be constructed here. The other evidences, important evidences which we get is that from 1875 till 1944, Gaurav, there were around 10 rounds of litigation which happened between the Muslim community and the Hindu community, and all those 10 rounds of litigation were won by the members of the Hindu community. That's very, very, very clinching proof. The fifth very, very clinching evidence is that the compromise which was happening on 12th of October 1968, it's a completely sham transaction, because as I told you that this entire land vested in Shri Krishna Janmabhoomi Trust, and the compromise was done by Krishna Janmabhoomi Seva Sangh. So all these are evidences which show, and the more evidences of Garh Sahita, wherein it has been mentioned that what is the importance of this place, what is the importance of the Karagar of Kans. And apart from that, Gaurav, I must tell you that once advocate commission will happen and once this team will go at the site in question, more proofs will come of Kans Karagar, and I'm telling you with utmost sense of authority and responsibility that when survey will happen at the site in question, the Karagar of Kans will be found here only.
0: Okay. Advocate Vishnu Shankar Jain, for joining me here on this India First special broadcast. Many thanks. Now, there is a trail of evidence and it's linked all throughout since the demolition ordered by Aurangzeb in 1670 all the way down to date about the ownership of that land, Krishnan Lala Virajman. But you've heard the legal position. Politically, has the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath sounded the poll bugle on Sri Krishna Janmashtami saying his government has faith in Sri Krishna, Sri Ram, Baba Vishwanath and Ma Vindhyavasini? Those who have faith in Babar and Aurangzeb will not respect Hindu Aastha, says the Chief Minister of Uttar Pradesh. So let me now throw it open for a wider discussion. Let me bring in Maulana Sajid Rashidi into this conversation, Anila Singh of the BJP, Anurag Bhadauria of the Samajwadi Party. And Anila saying, if you look at election data, madam, 2014, BJP had won 24 seats in Western Uttar Pradesh. In 2019, it came down to 19. And in 2024, it had shrunk to just 13. Is this statement of the Chief Minister just ahead of UP elections an attempt to regain lost ground?
2: My Ram Ram to all. And I wish you, my co-panelists and your viewers, a very happy Janmashtami. Gaurav, the issue of Sri Krishna Janmabhoomi is not an ordinary land dispute, but a matter of faith, identity, and a resolve of liberation, the humiliation imposed by historical invaders for 1.4 billion Indians, I will say. I will include my Muslim brothers and sisters also into it, because, you know, that their DNA is our only, Sanatani, Hindu. But even if you want to exclude Muslims from it, more than welcome. But just as we reclaim the grand temple of Lord Sri Ram within constitutional and legal bounds, no force can stop the truth from emerging at the birthplace of Kana. We have got all the rights, all the Sanatanis, Hindu, they have got all the rights to claim it. Nobody can stop them. Regardless of how many hurdles the opposition creates for vote bank appeasement, the Bharatiya Janata Party maintains an unequivocal stance, and we stand steadfast with the constitution.
0: Fair enough. So you insist, you absolutely insist that this is not politics, this is Sanatan Aastha. Maulana Sajid Rashidi, kya aap Anila Singh se ittefaq rakhte hain ki wo kehti hain ki jo इस्लामिक आक्रांताओं ने, उनके वंशजों ने अत्याचार किए भारत के मूल निवासियों पर, वो सभी के ऊपर एक कलंक है, चाहे वो भारत के हिंदू हों और मुस्लिम हों, और इसीलिए अगर ये दिव्य भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनेगा जन्मभूमि मथुरा में जिस तरह से अयोध्या में बना, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को किस रूप में देखते हैं?
3: देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि ना कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा ही चंगा है, आधी बात तो इसमें सही है और आधी बात गलत है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, ये बात तो सही है, लेकिन सब चंगा है ये बात सही नहीं है।
0: ठीक।
3: एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी आदमी को कोर्ट से पहले फैसला सुना देना कि हम यहाँ दिव्य और भव्य मंदिर बनाएंगे और बनना चाहिए, आप खुद बताएं ईमानदारी से, पत्रकार होने के नाते क्या ये संवैधानिक है? ये कोर्ट की भी अवमानना है और ये हमारे संविधान की भी अवमानना है। इस तरह का बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, अभी मामला कोर्ट में है
0: जी,
3: और कोर्ट में आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो सबसे पहले कोर्ट ने यह कहा था कि एक झूठ जो फैलाया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, कोर्ट ने साफ कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। और कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके बाद भी क्या 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट और मोहन भागवत का वो बयान कि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो सलट गया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना? क्या ये लोग अब भी ढटाई के साथ, बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ मस्जिदों में मंदिर ढूंढेंगे? क्या कानून की कोई इनके अंदर कोई किसी तरह का रहमो करम नहीं है? 1991
0: अनुराग भदौरिया का पहला रिस्पॉन्स ले लूं, फिर आपके पास वापस लौटूंगा।
3: कोर्ट से बड़े हो गई है।
0: ठीक ठीक ठीक। अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिनकी आस्था बाबर और औरंगजेब में है वो हिंदू आस्था क्या समझेंगे और कैसे समझेंगे। आप किस रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान को देखते हैं?
4: देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक मुझे दिल्ली की बीजेपी और लखनऊ की बीजेपी में थोड़ा सा कुछ हमें गड़बड़ नजर आ रहा है। एक तरफ तो उज्बेकिस्तान से देश के प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिलता है और उसी उज्बेकिस्तान से ही तो मुझे लगता है बाबर भी आया था, तो इसके मतलब कि आप जो अवार्ड उज्बेकिस्तान से मिला हो तो नहीं लेना चाहिए फिर, अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात करें। एक बात, दूसरी बात, अब क्या उत्तर प्रदेश में प्रभु राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अब बात नहीं करना चाहती, क्योंकि प्रभु राम के पहले बातें करती थी। अयोध्या में प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी में प्रभु राम के जो जिनके देख रेख में मंदिर चल रहा था उनको बचाने की कोशिश भी हुई। आप प्रभु राम की राम भक्त की जो बात करते, जो सनातन की बात करते थे, चढ़ावा चोरी पे चुप्पी साध गए, तो फिर आप राम भक्त नहीं थे, आप सत्ता भक्त थे, सत्ता के लिए प्रभु राम की बात कर रहे थे। प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हुआ तो कौन आया उसको उजागर करने के लिए, उसके चढ़ावा चोरी को किसने उजागर किया, कौन जनता के सामने लेके आया, समाजवादी पार्टी। तो राम भक्त कौन हुआ, समाजवादी पार्टी। सनातन को कौन, सनातनी कौन हुआ, समाजवादी पार्टी। अब आप चुनाव आ गया, चुनाव के समय
0: तो
4: में हम
0: आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी सनातनी है। आपने तीन बहुत प्रमुख मुद्दे उठाए अनिला सिंह,
4: बात पूरी हो जाए, अभी बात पूरी नहीं हुई, दस सेकंड
0: ठीक
4: दस जी,
0: अनुराग बात पूरी
4: समाजवादी कट्टर सनातनी है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम राष्ट्रभक्त भी हैं। राष्ट्रभक्त होने के नाते हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं और जो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करेगा वही देशभक्त होगा। अब भारतीय जनता पार्टी बताए क्या न्यायपालिका का सम्मान करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी तो अब तक आप 10 साल से क्या कर रहे थे बताइए। अभी आप चुनाव के वक्त में आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप कृष्ण मंदिर की बात करने लगे, लेकिन 10 साल में क्यों नहीं आपने, अगर न्यायपालिका नहीं मानते थे तो बना देते आप, किसने आपको रोका था।
0: प्रमुख मुद्दे उठाए अनिला सिंह, जवाब दीजिए। पहले श्री राम मंदिर की चर्चा होती थी, जब दान चोरी का मुद्दा उठा तो क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए अब श्री कृष्ण मंदिर की बात की जा रही है। दैट्स पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इक्वली सिग्निफिकेंट। मौलाना साजिद रशीदी रेजेस द पॉइंट दैट व्हाई इज इट डोंट यू हैव एनी फेथ इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991।
2: देखिए गौरव, मैंने अभी रशीदी साहब की बात सुनी, ये वही रशीदी साहब हैं जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो ऐसा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आ गया था तो इनके सुर बदल गए थे और इन्होंने कहना शुरू कर दी, जबकि मैंने सैकड़ों डिबेट इनके साथ करी थी और इन्होंने हमेशा भगवान श्री राम को गाली देने का काम किया और जैसे ही वर्डिक्ट आ गया इनके सुर बदल गए। अभी मैंने शुरुआत ये करी थी कि मैं आशा करती हूँ, एक सेकंड चुप रहिए, जब आपका नंबर आए
3: तब बातें मत करो ना।
2: अभी अभी अभी
3: धर्म पर नहीं बोलता,
2: मैंने अपनी बात की शुरुआत करी थी तो ये सोचते हुए करी थी कि 1.4
0: मौलाना साहब अनिला जी अपनी बात पूरी कर ले फिर आपके पास आऊंगा।
2: मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इट, आई वाज थिंकिंग दैट मिस्टर रशीदी इज गोइंग टू स्टिक टू हिज स्टेटमेंट व्हिच ही हैड सेड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन भगवान श्री राम दैट यस, जो हमारे इष्ट देवता है, कम से कम जो हमारे इंपॉर्टेंट इष्ट देवता हैं, जिनके मंदिर तोड़कर जहां मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं, वो सनातनी हिंदुओं को मिलना चाहिए। नाउ अगेन ही इज बैक टू स्क्वायर वन, ही इज बेशरम बेहया और जाने क्या क्या इन्होंने यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कान खोलकर सुन लीजिए रशीदी साहब, ये वो सनातनी है जिन्होंने 500 वर्ष संघर्ष करके भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया और गर्व से कहती हूँ मैं उस राजनीतिक दल से आती हूँ जिसके कार्यकर्ताओं ने गाली गोली जेल सब भुगता है उस संघर्ष में। ठीक है, आप लोग या आप लोगों के टोकरा जो उठाए हुए प्लेकार्ड उठाए हुए खड़े हुए होते हैं ना हलाल हिंदू, वो लोग कहीं नजर नहीं आए थे। अनुराग भदौरिया जी ने कहा हम कट्टर सनातनी हैं, साहब आप कट्टर सनातनी आज अचानक अगर हो गए हैं तो कहिए अपने हलाल हिंदू नेता से कि खड़े होकर बोले कि उनके पिताजी और उनके चाचा जी ने जो जो कहा था कार सेवकों को गोली मारते हुए वो बिल्कुल गलत थे।
4: एक सेकंड,
2: एक सेकंड में मैं आपको 4 सेकंड दूंगी, मेरी बात पूरी हो जाएगी।
4: चढ़ावा चोरी
0: एक एक करके
2: भव्य काना मंदिर शुड बी रीबिल्ट जो जमीन हमारी गई
4: गौरव
2: हुई
4: जी
2: है
4: 10 सेकेंड 37 एकड़,
2: जी वो वापस मिलनी चाहिए।
4: गौरव जी 10 सेकेंड,
0: मौलाना साहब मैं आपके पास आऊंगा, पहले अनुराग भदौरिया उत्तर देना चाहते हैं। अमीरा सिंह जी, यू मेड योर पॉइंट, अनुराग भदौरिया जल्दी से उसका उत्तर
4: दीजिए। बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या बाबर ने रोका हुआ है कि यहाँ पे स्कूल ना बनाइए, स्कूल में रास्ते मत बनाइए? क्या बाबर ने रोका है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिले? क्या बाबर ने रोका है कि समय पे इलाज ना हो? कि बाबर ने रोका है कि आपको गड्ढे करवा दे रहे हैं रोड में, या आप रोड बनाते हो रोडों पे गड्ढे हो जाते हैं? बाबर ने रोक लिया क्या? बाबर ने रोक लिया ना वृंदावन में, वहां पे नालियां जाम पड़ी हैं, भजभजा रही हैं। क्या बाबर ने रोका क्या वृंदावन में नालियां, वहां का नगर निगम काम ना करे? क्या बाबर ने रोका है क्या कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए, ये बाबर ने रोक लिया क्या? बाबर ने रोक लिया
0: जी, जवाब दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी भी जवाब देना चाहते हैं
4: क्या? कमाल की बात
0: है। अनुराग भदौरिया ओनली,
4: यहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए
2: जी। अनुराग
0: भदौरिया जी, आपने अपना पक्ष रखा, अनिला सिंह जी उत्तर दीजिए।
2: No, no, I asked him that if you are a Sanadri Hindu, as you are claiming right now, then are you going to ask your halal Hindu neta, Aklesh Yadav, that he should defend whatever his father and his chachas had said? Now, instead of answering that, he is asking me questions on development. Let me tell you, Mr. Bhadauria, here. अगर वृंदावन मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया तो हमारी सरकार ने निर्माण किया,
4: समस्या का समाधान बताइए, आप क्यों नहीं बोलना
2: हो रहा है?
4: आप बताइए, लोग परेशान हैं, यहाँ पे समय से इलाज नहीं हो रहा है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, रोडों पे गड्ढे हो जा रहे हैं, समय पे दवा नहीं आ रही,
0: वन बाय वन Both of you speaking simultaneously. Our viewers are unable to get either points of view. Maulana sahab, okay, only Maulana Sajid Rashidi. Maulana sahab, Anila Singh ji ek prashn utha rahi hai. Hinduon ke liye Ayodhya, Mathura aur Kashi, ye bahut aastha ka prashn hai. Dekhiye, Yogeshwar Shri Krishna ka jagah janm yahan hua hai, कहीं और तो वो मंदिर बन नहीं सकता, यही बनेगा। मुसलमानों के लिए इस ईदगाह का क्या महत्व है? अगर औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़वा कर वहां मस्जिद बनवाई, कहीं और बन जाएगी। इसी जगह पर भारत के मुसलमानों को क्यों मस्जिद चाहिए? यह प्रश्न अनिला सिंह उठा रही है, गलत क्या है?
3: मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा, पहले यहां से बस बात शुरू करते हैं। औरंगजेब और बाबर ने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई, मंदिरों को लूटा, यहां भी मंदिरों को लूटा जा रहा है, तो औरंगजेब और बाबर के वंशज कौन है? एक तो ये तय करना है हिंदुस्तान में लोगों को, दूसरी बात
0: वो लोग तय करेंगे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि मुसलमानों के लिए मथुरा और काशी का क्या महत्व है, हिंदुओं के लिए तो उनकी सिविलाइजेशनल आस्था का प्रश्न है।
3: मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, और मैंने पहले सेगमेंट में भी जवाब दिया कि एक झूठ बाबरी मस्जिद के लिए भी फैलाया गया था, यहाँ भी एक झूठ फैलाया जा रहा है कि मंदिर तोड़ के ये चीजें बनी हैं।
0: और ये झूठ फैलाया जा रहा है आपके मुताबिक? औरंगजेब का अपना फरमान मौजूद है, पढ़ लीजिए उस फरमान को, और वो फरमान हम दिखा भी देंगे,
3: आप
0: पढ़ लीजिए औरंगजेब के फरमान को। और इसीलिए मैं वकील को लेकर आया था,
3: सब
0: ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या अलिफ में आपने पढ़ना पढ़ना नहीं सीखा तो आपको मालूम नहीं है ये।
3: आप एक बात बताइए,
0: कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है?
3: वही लिखेगा मैंने तोड़ दिया, ये कौन सा फरमान बता रहे हैं आप?
0: उसने आदेश दिया तोड़वाने के लिए, पढ़ कर आइए मौलाना साहब,
3: मैंने मंदिर तोड़ा है,
0: पढ़ कर आइए मौलाना साहब, पढ़ कर आइए। और एक सबूत नहीं, तमाम सबूत है, तमाम सबूत है मौलाना साहब कि वहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ने का फरमान औरंगजेब ने जारी किया और 1670 में मंदिर ध्वस्त किया गया, ये फरमान है। तो
3: यहाँ गर्भगृह था बाबरी मस्जिद में, तीसरे गुंबद के नीचे बीच
0: मैं बात कर रहा हूँ, मथुरा की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप मुझे गाड़ी का नंबर बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी डिबेट होगी, मथुरा पर बात कीजिए। आज
3: मंदिर उससे अलग बना है, कहाँ गर्भगृह की बात कर रहे हैं आप, कहाँ जन्मस्थान की बात कर रहे हैं आप?
0: यू नो दिस इज परहैप्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई दिस मैटर मस्ट बी डिसाइडेड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, कोर्ट्स ऑफ लॉ शुड डिसाइड दिस मैटर, दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, equally important, this is a question that even Muslims must ponder. For Hindus, Mathura and Kashi are places of civilizational worship like Ayodhya. So if there is no justice from the time of Aurangzeb and the British and so many years, do Hindus don't have a right to civilizational justice in their own country even through courts of law? and perhaps it's best for courts of law to decide. It's best for courts of law to decide. Why would some continue to defend the actions of invaders and their descendants? We'll let viewers decide. We'll let viewers decide. I've run out of time. I want to thank our guests. I've run out of time on this part of the show. There's a very big story, and we want to talk about those success stories of India, which is coming up on the other side of a quick break. I want to talk about a satellite, a great satellite that's been launched, a satellite launch that truly signifies Jai Jawan and Jai Kisan. That's coming up on the other side of a quick break on Battle Cry. Stay with us.

0: यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: Every story finds a place. Every voice gets a platform. Every side has its say. Your channel for every headline. Prime Team on India Today, India's only democratic newsroom.

0: लेकिन अब रिस्पॉन्स कर रही है, तो आई होप कि पुलिस इस तरीके से रिस्पॉन्स करती रहेगी और उनके लिए और नहीं मिलेगा।
1: A confrontation at Delhi's Jantar Mantar has now snowballed into a fresh political and legal battle. And in the latest development, self-styled Hindutva influencer Swatantra Bhardwaj has been detained by Delhi police. CJP protesters had gathered outside Sansad Marg police station on Friday, demanding justice for their supporter Nishu Azad's father, Sanjay Kumar Yadav. The protesters had demanded the arrest of a man named Swatantra Bhardwaj for allegedly assaulting Nishu's father during the Jantar Mantar protest in July. They also want him booked under the SC/ST Act and for attempt to murder.
2: जिस तरीके से उस व्यक्ति ने हरकतें की थी, अपना एक घटना को अंजाम दिया था, उस हिसाब से उसके ऊपर 307 हाफ मर्डर का केस और SC/ST एक्ट ये सब लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हमने इस FIR के अंदर पुलिस से मांग की कि आप इसके अंदर हाफ मर्डर SC/ST एक्ट और 307 की धारा लगाइए।
3: कुछ लोग कह रहे हैं अनजाने में मेरे सिर पर चोट मारकर सोचते कोई तीर बहुत बड़ा तीर मार दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर वहां पर 2 मिनट पुलिस ना आती तो फोटो में देख सकते हो तुम्हारी दशा किस तरह का कर रखी थी।
4: निशु को थ्रेट देते आ रहा था एंड जब वो आया जंतर मंतर, उसने आके इतना संगीन अपराध किया, वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया। उसके बाद FIR भी फाइल हुआ, तब भी दिल्ली पुलिस उसको बचा रही है, तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या वो 2800 हार्डन क्रिमिनल्स में से एक नहीं है? तो दिल्ली पुलिस एक जगह सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोलती है, यहाँ पे एक्शन कुछ और लेती है।
1: Sources tell India Today that Delhi police has agreed to add SC/ST Act provisions to the existing FIR. A fresh FIR is unlikely. But the demand for an attempt to murder charge remains unresolved.
5: Zindabad!
6: Zindabad!
5: Zindabad!
6: Zindabad!
5: Zindabad!
6: Zindabad!
5: Delhi police, hush now!
6: Hush now! Hush now!
1: India Today has learned that police are seeking a fresh medico-legal certificate of Sanjay Kumar Yadav. A decision on the attempt to murder section will be taken after the assessment. Police maintain that action has already been taken. The FIR records the dispute as beginning over video recording and names Swatantra and Suraj in connection with the alleged assault. The controversy escalated this week after a video surfaced in which Swatantra allegedly spoke about having assaulted Sanjay and bragged that no attempt to murder charge was added. In the video, he claimed proximity to some BJP and NDA leaders and boasted that he was out of police station within hours after assaulting Nishu's father. That video has become a major flashpoint in the case. One of the names mentioned by him was that of Union Minister Chirag Paswan, who has since distanced himself from the controversy.
7: इस बात को खुलेआम पॉडकास्ट पे कबूल करना और उसके बाद भी अगर उस पे कार्रवाई नहीं होगी तो मैं मानता हूं कि ये बहुत गलत उदाहरण।
1: Speaking to India Today, Swatantra played the victim card, alleging that he acted in self-defense.
8: ये लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी मेरे बारे में पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब भारत के अंदर मेरे ऊपर इतना अटैक होने का संभावना बना तब राहुल गांधी हमको जानते भी नहीं थे। तो आप समझ लीजिए जिस तरीके से जितने विपक्ष के नेता मेरे पीछे पड़े हैं ना, ये लोग कहीं ना कहीं एक आवाज दबाना चाहते हैं।
1: The political battle has widened. Leader of opposition Rahul Gandhi on Friday posted a social media message assuring support to Nishu. And now, with Swatantra detained, the case has entered a new phase. What began as a clash between two influencers has now snowballed into a larger political and legal battle. Nishu Azad, a Dalit background CJP influencer, and Swatantra Bhardwaj, a right-wing influencer, now find themselves at the center of a row raising bigger questions. Did caste, ideology and political proximity influence what happened after the clash? And will the police action match the allegations? Videshwarya Paliwal, Bureau Report, India Today.
9: You are watching India Today.

0: बस करो बस करो, ये खाना बच्चे के लिए, ये होली खेलने के लिए नहीं है, पागलों को तुम लोग।
1: The sequel will once again take the story to Australia, bringing back the franchise that gave audiences an unforgettable mix of friendship, fatherhood, and hilarious chaos.
2: Hey.
1: The original film, headlined by Akshay Kumar, Vidya Balan, Ritesh Deshmukh and Fardeen Khan, followed carefree bachelors whose lives are turned upside down when a baby suddenly enters their world.
3: Okay, ab ye pakad isko.
4: I'll hold this.
3: Isko pakad.
4: Are aise nahi.
3: तो फिर होल्डिंग करेक्टली
0: ऐसे पकड़ दे बेबी को।
3: तुझे कैसे पता?
0: अरे मुझे सब मालूम है, मैंने सब बच्चे बच्चियां पकड़े हैं। होल बेब।
1: What begins as a comic nightmare eventually turns into an emotional journey of love, responsibility and family.
5: Nurse, take her to the ICU. Prepare the ventilator, quick. आप लोग ऑब्जर्वेशन रूम में जाइए प्लीज।
6: ओके।
5: 100% ऑक्सीजन। कैन आई हैव आईवी एक्सेस स्ट्रेट अवे?
7: 27 28 29 30
8: स्टिल फ्लैट लाइन डॉक्टर।
5: एपिफेन

0: the corridor okay. of Kans will be found here only.
1: Okay. Advocate Vishnu Shankar Jain, for joining me here on this India First special broadcast. Many thanks. Now, there is a trail of evidence and it's linked all throughout since the demolition ordered by Aurangzeb in 1670 all the way down to date about the ownership of that land, Krishna Lala Virajman. But you've heard the legal position. Politically, has the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath sounded the poll bugle on Sri Krishna Janmashtami saying his government has faith in Sri Krishna, Sri Ram, Baba Vishwanath and Ma Vindhyavasini? Those who have faith in Babar and Aurangzeb will not respect Hindu Aastha, says the Chief Minister of Uttar Pradesh. So let me now throw it open for a wider discussion. Let me bring in Maulana Sajid Rashidi into this conversation, Anila Singh of the BJP, Anurag Bhadauria of the Samajwadi Party. And Anila Singh, if you look at election data, madam, 2014, BJP had won 24 seats in Western Uttar Pradesh. In 2019, it came down to 19. And in 2024, it had shrunk to just 13. Is this statement of the Chief Minister just ahead of UP elections an attempt to regain lost ground?
2: My Ram Ram to all. And I wish you, my co-panelists and your viewers, a very happy Janmashtami. Gaurav, the issue of Sri Krishna Janmabhoomi is not an ordinary land dispute, but a matter of faith, identity, and a resolve of liberation. The humiliation imposed by historical invaders for 1.4 billion Indians, I will say. I will include my Muslim brothers and sisters also into it. Because, you know, that their DNA is our only, Sanatani, Hindu. But if you want to exclude Muslims from it, more than welcome. But just as we reclaim the grand temple of Lord Sri Ram within constitutional and legal bounds, no force okay. can stop the truth from emerging at the birthplace of Kana. We have got all the rights. All the Sanatanis, okay. Hindu, they have got all the rights to claim it. Nobody can stop them. Regardless of how many hurdles the opposition creates for vote bank appeasement, the Bharatiya Janata Party maintains an unequivocal stance, and we stand steadfast with the constitution.
1: Fair enough. So you insist, you absolutely insist that this is not politics, this is Sanatan Aastha. Maulana Sajid Rashidi, kya aap Anila Singh se ittefaq rakhte hain ki wo kehti hain ki jo इस्लामिक आक्रांताओं ने उनके वंशजों ने अत्याचार किए भारत के मूल निवासियों पर वो सभी के ऊपर एक कलंक है चाहे वो भारत के हिंदू हो और मुस्लिम हो और इसीलिए अगर ये दिव्य भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनेगा जन्मभूमि मथुरा में जिस तरह से अयोध्या में बना तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को किस रूप में देखते हैं
3: देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि ना कर्फ्यू है न दंगा है सब चंगा ही चंगा है आधी बात तो इसमें सही है और आधी बात गलत है न कर्फ्यू है न दंगा है ये बात तो सही है लेकिन सब चंगा है ये बात सही नहीं है
1: ठीक
3: एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी आदमी को कोर्ट से पहले फैसला सुना देना कि हम यहाँ दिव्य और भव्य मंदिर बनाएंगे और बनना चाहिए आप खुद बताएं ईमानदारी से पत्रकार होने के नाते क्या ये संवैधानिक है ये कोर्ट की भी अवमानना है और ये हमारे संविधान की भी अवमानना है इस तरह का बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को नहीं देना चाहिए दूसरी बात अभी मामला कोर्ट में है
1: जी
3: और कोर्ट में आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो सबसे पहले कोर्ट ने यह कहा था कि एक झूठ जो फैलाया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है कोर्ट ने साफ कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो और कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो इसके बाद भी क्या 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट और मोहन भागवत का वो बयान कि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो सलट गया अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना क्या ये लोग अब भी ढटाई के साथ बेहयाई के साथ बेशर्मी के साथ मस्जिदों में मंदिर ढूंढेंगे क्या कानून की कोई इनके अंदर कोई किसी तरह का रहमो करम नहीं है 1991
1: अनुराग भदौरिया का पहला रिस्पांस ले लूं, फिर आपके पास वापस लौटूंगा।
3: कोर्ट से बड़े हो गई है।
1: ठीक ठीक ठीक। अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिनकी आस्था बाबर और औरंगजेब में है वो हिंदू आस्था क्या समझेंगे और कैसे समझेंगे। आप किस रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान को देखते हैं?
4: देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक मुझे दिल्ली की बीजेपी और लखनऊ की बीजेपी में थोड़ा सा कुछ हमें गड़बड़ नजर आ रहा है। एक तरफ तो उज्बेकिस्तान से देश के प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिलता है और उसी उज्बेकिस्तान से ही तो मुझे लगता है बाबर भी आया था। तो इसके मतलब कि आप जो अवार्ड उज्बेकिस्तान से मिला हो तो नहीं लेना चाहिए फिर, अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात करें। एक बात, दूसरी बात, अब क्या उत्तर प्रदेश में प्रभु राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अब बात नहीं करना चाहती, क्योंकि प्रभु राम के पहले बातें करती थी। अयोध्या में प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी में प्रभु राम के जो जिनके देखरेख में मंदिर चल रहा था उनको बचाने की कोशिश भी हुई। आप प्रभु राम की राम भक्त की जो बात करते, जो सनातन की बात करते थे, चढ़ावा चोरी पे चुप्पी साध गए, तो फिर आप राम भक्त नहीं थे, आप सत्ता भक्त थे, सत्ता के लिए आप प्रभु राम की बात कर रहे थे। प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हुआ तो कौन आया उसको उजागर करने के लिए, उसके चढ़ावा चोरी को किसने उजागर किया, कौन जनता के सामने लेके आया, समाजवादी पार्टी। तो राम भक्त कौन हुआ, समाजवादी पार्टी। सनातन को कौन, सनातनी कौन हुआ, समाजवादी पार्टी। अब आप चुनाव आ गया, चुनाव के समय में हम
1: आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी सनातनी है। आपने तीन बहुत प्रमुख मुद्दे उठाए अनिला सिंह,
4: बात पूरी हो जाए, अभी बात पूरी नहीं हुई, दस सेकंड।
1: ठीक ठीक,
4: दस सेकंड।
1: अनुराग भदौरिया
4: अपनी बात, समाजवादी कट्टर सनातनी है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम राष्ट्रभक्त भी हैं। राष्ट्रभक्त होने के नाते हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं और जो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करेगा वही देशभक्त होगा। अब भारतीय जनता पार्टी बताए क्या न्यायपालिका का सम्मान करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी तो अब तक आप 10 साल से क्या कर रहे थे बताइए। अभी आप चुनाव के वक्त में आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप कृष्ण मंदिर की बात करने लगे, लेकिन 10 साल में क्यों नहीं आपने, अगर न्यायपालिका नहीं मानते थे तो बना देते आप, किसने आपको रोका था?
1: प्रमुख मुद्दे उठाए अनिला सिंह, जवाब दीजिए। पहले श्री राम मंदिर की चर्चा होती थी, जब दान चोरी का मुद्दा उठा तो क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए अब श्री कृष्ण मंदिर की बात की जा रही है? दैट्स पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इक्वली सिग्निफिकेंट। मौलाना साजिद रशीदी रेजेस द पॉइंट दैट व्हाई इज इट डोंट यू हैव एनी फेथ इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991।
2: देखिए गौरव, मैंने अभी रशीदी साहब की बात सुनी, ये वही रशीदी साहब हैं जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो ऐसा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आ गया था तो इनके सुर बदल गए थे और इन्होंने कहना शुरू कर दी, जबकि मैंने सैकड़ों डिबेट इनके साथ करी थी और इन्होंने हमेशा भगवान श्री राम को गाली देने का काम किया और जैसे ही वर्डिक्ट आ गया इनके सुर बदल गए। अभी मैंने शुरुआत ये करी थी कि मैं आशा करती हूँ, एक सेकंड चुप रहिए, जब आपका नंबर आया
3: तो बातें मत करो ना।
2: अभी अभी अभी
3: धर्म पर नहीं बोलता,
2: मैंने अपनी बात की शुरुआत करी थी तो ये सोचते हुए करी थी कि 1.4
1: मौलाना साहब अनिला जी अपनी बात पूरी कर ले फिर आपके पास आऊंगा।
2: मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इट, आई वाज थिंकिंग दैट मिस्टर रशीदी इज गोइंग टू स्टिक टू हिज स्टेटमेंट व्हिच ही हैड सेड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन भगवान श्री राम दैट यस, जो हमारे इष्ट देवता हैं, कम से कम जो हमारे इंपॉर्टेंट इष्ट देवता हैं, जिनके मंदिर तोड़कर जहां मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं, वो सनातनी हिंदुओं को मिलना चाहिए। नाउ अगेन ही इज बैक टू स्क्वायर वन, ही इज बेशरम, बेहया और जाने क्या क्या इन्होंने यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कान खोलकर सुन लीजिए रशीदी साहब, ये वो सनातनी है जिन्होंने 500 वर्ष संघर्ष करके भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया और गर्व से कहती हूँ मैं उस राजनीतिक दल से आती हूँ जिसके कार्यकर्ताओं ने गाली गोली जेल सब भुगता है उस संघर्ष में। ठीक है, आप लोग या आप लोगों के टोकरा जो उठाए हुए प्लेकार्ड उठाए हुए खड़े हुए होते हैं ना हलाल हिंदू, वो लोग कहीं नजर नहीं आए थे। अनुराग भदौरिया जी ने कहा हम कट्टर सनातनी हैं, साहब आप कट्टर सनातनी आज अचानक अगर हो गए हैं तो कहिए अपने हलाल हिंदू नेता से कि खड़े होकर बोले कि उनके पिताजी और उनके चाचा जी ने जो जो कहा था कार सेवकों को गोली मारते हुए वो बिल्कुल गलत थे।
4: एक सेकंड,
2: एक सेकंड नहीं, मैं आपको 4 सेकंड दूंगी, मेरी बात पूरी हो जाएगी। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनसे पूछिए,
4: सुन लीजिए,
2: इनसे पूछिए ना गौरव जी,
4: ये हो रहा है ना गौरव जी, आई विल नॉट लेट यू स्पीक,
2: नाउ दिस इज माय टर्न, कैन यू आंसर मी दिस, कैन यू आंसर मी दिस राइट नाउ?
4: अरे मैडम सुनिए सुनिए, चिल्लाइए मत, चढ़ावा चोरी पे हमने बोल दिया तो आपका बीपीआई होने लगा।
2: समाजवादी पार्टी इज गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्ट्रगल।
4: आप बताइए चढ़ावा चोरी कैसे हो गया? आप मेरी बात सुनिए,
1: एक एक करके।
2: भव्य काना मंदिर शुड बी रीबिल्ट। जो जमीन हमारी गई हुई है 37 एकड़ वो वापस मिलनी चाहिए।
1: मौलाना साहब मैं आपके पास आऊंगा, पहले अनुराग भदौरिया उत्तर देना चाहते हैं। अनिला सिंह जी, यू मेड योर पॉइंट, अनुराग भदौरिया जल्दी से उसका उत्तर
4: दीजिए। बताइए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या बाबर ने रोका हुआ है कि यहाँ पे स्कूल ना बनाइए, स्कूल में रास्ते मत बनाइए? क्या बाबर ने रोका है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिले? क्या बाबर ने रोका है कि समय पे इलाज ना हो? कि बाबर ने रोका है कि आपको गड्ढे करवा दे रहे हैं रोड में? या आप रोड बनाते हो, रोडों पे गड्ढे हो जाते हैं, बाबर ने रोक लिया क्या? बाबर ने रोक लिया ना वृंदावन में, वहां पे नालियां जाम पड़ी हैं, भजभजा रही हैं। क्या बाबर ने रोका क्या वृंदावन में नालियां, वहां का नगर निगम काम ना करे? क्या बाबर ने रोका है क्या कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए, ये बाबर ने रोक लिया क्या? बाबर ने
1: रोक लिया? जवाब दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी भी जवाब देना चाहते हैं
4: क्या? कमाल की बात
1: है। अनिला सिंह ने अनुराग भदौरिया उनली,
4: यहाँ पे महिलाओं का सम्मान होना चाहिए।
1: अनुराग भदौरिया जी, आपने अपना पक्ष रखा, अनिला सिंह जी उत्तर दीजिए।
2: No, no, I asked him that if you are a Sanadri Hindu, as you are claiming right now, then are you going to ask your halal Hindu neta, Aklesh Yadav, that he should defend whatever his father and chachas had said? Now, instead of answering that, he is asking me questions on development. Let me tell you, Mr. Bhadauria here. अगर वृंदावन मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया तो हमारी सरकार ने निर्माण किया,
4: समस्या का समाधान बताइए, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आप बताइए, लोग परेशान हैं, यहाँ पे समय से इलाज नहीं हो रहा है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, रोडों पे गड्ढे हो रहे हैं, समय पे दवा नहीं आ रही,
1: वन बाय वन Both of you speaking simultaneously. Our viewers are unable to get either points of view. Maulana Sahab. Okay, only Maulana Sajid Rashidi. Maulana Sahab, Anila Singh Ji ek prashn utha rahi hai. Hinduon ke liye Ayodhya, Mathura aur Kashi, ye bahut आस्था का प्रश्न है। देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण का जगह जन्म यहां हुआ है, कहीं और तो वो मंदिर बन नहीं सकता, यही बनेगा। मुसलमानों के लिए इस ईदगाह का क्या महत्व है? अगर औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़वा कर वहां मस्जिद बनवाई, कहीं और बन जाएगी। इसी जगह पर भारत के मुसलमानों को क्यों मस्जिद चाहिए? यह प्रश्न अनिला सिंह उठा रही है, गलत है।
3: मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा, पहले यहां से बस बात शुरू करते हैं। औरंगजेब और बाबर ने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई, मंदिरों को लूटा, यहां भी मंदिरों को लूटा जा रहा है, तो औरंगजेब और बाबर के वंशज कौन है? एक तो ये तय करना है हिंदुस्तान में लोगों को। दूसरी बात,
1: वो लोग तय करेंगे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि मुसलमानों के लिए मथुरा और काशी का क्या महत्व है, हिंदुओं के लिए तो उनकी सिविलाइजेशनल आस्था का प्रश्न है।
3: मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, और मैंने पहले सेगमेंट में भी जवाब दिया कि एक झूठ बाबरी मस्जिद के लिए भी फैलाया गया था, यहाँ भी एक झूठ फैलाया जा रहा है कि मंदिर तोड़ के ये चीजें बनी हैं।
1: और झूठ फैलाया जा रहा है आपके मुताबिक? औरंगजेब का अपना फरमान मौजूद है, पढ़ लीजिए उस फरमान को, और वो फरमान हम दिखा भी देंगे, पढ़ लीजिए औरंगजेब के फरमान को। और इसीलिए मैं वकील को लेकर आया था।
3: ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है
1: या अलिफ में आपने पढ़ना नहीं सीखा तो आपको मालूम नहीं है? ये
3: आप एक बात बताइए,
1: कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है?
3: वही लिखेगा मैंने तोड़ दिया, ये कौन सा फरमान बता रहे हैं आप?
1: उसने आदेश दिया तोड़वाने के लिए, पढ़ कर आइए मौलाना साहब।
3: मैंने मंदिर तोड़ा है,
1: पढ़ कर आइए मौलाना साहब, पढ़ कर आइए। और एक सबूत नहीं, तमाम सबूत है मौलाना साहब कि वहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ने का फरमान औरंगजेब ने जारी किया और 1670 में मंदिर ध्वस्त किया गया, यह फरमान है। तो
3: यहां गर्भगृह था बाबरी मस्जिद में, तीसरे गुंबद के नीचे बीच
1: मैं बात कर रहा हूँ, मथुरा की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप मुझे गाड़ी का नंबर बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी डिबेट होगी। मथुरा पर बात कीजिए, आज
3: मंदिर उससे अलग बना है, कहाँ गर्भगृह की बात कर रहे हैं आप, कहाँ जन्मस्थान की बात कर रहे हैं आप?
1: यू नो दिस इज परहैप्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई दिस मैटर मस्ट बी डिसाइडेड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। कोर्ट्स ऑफ लॉ शुड डिसाइड दिस मैटर, दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, इक्वली इंपॉर्टेंट, This is a question that even Muslims must ponder. For Hindus, Mathura and Kashi are places of civilizational worship, like Ayodhya. So if there is no justice from the time of Aurangzeb and the British and so many years, do Hindus don't have a right to civilizational justice in their own country, even through courts of law? And perhaps it's best for courts of law to decide. It's best for courts of law to decide. Why would some continue to defend the actions of invaders and their descendants? We'll let viewers decide. We'll let viewers decide. I've run out of time. I want to thank our guests. I've run out of time on this part of the show. There's a very big story. And we want to talk about those success stories of India, which is coming up on the other side of a quick break. I want to talk about a satellite, a great satellite that's been launched, a satellite launch that truly signifies Jai Jawan and Jai Kisan. That's coming up on the other side of a quick break on Battle Cry. Stay with us.

0: समाजवादी पार्टी तो सबका सम्मान करती है, उसके नेता माननीय अखिलेश जी सबसे मिलते हैं। अब उसको देखने समझने का तो कौन व्यक्ति किस तरह का समझता है, समझने वाले पर निर्भर करता है को इस मुलाकात को किस रूप में समझदारी लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये समझने वालों पर डिपेंड करता है।
1: अब देखिए नेता है, सीजेपी वाले भी अपना नेता अग्री कर रहे हैं, मिले होंगे उससे, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। अंदरूनी मामला है, उसमें दो फाड़ हो तीन फाड़ हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता।

0: My Ram Ram to all, and I wish you, my co-panelists, and your viewers a very happy Janmashtami. Gaurav, the issue of Sri Krishna Janmabhoomi is not an ordinary land dispute, but a matter of faith, identity, and a resolve of liberation. The humiliation imposed by historical invaders for 1.4 billion Indians, I will say. I will include my Muslim brothers and sisters also into it. Because, you know, their DNA is our only, Sanatani, Hindu. But if you want to exclude Muslims from it, more than welcome. But just as we reclaim the grand temple of Lord Sri Ram within constitutional and legal bounds, no force can stop the truth from emerging at the birthplace of Kana. We have got all the rights. All the Sanatanis, Hindu, they have got all the rights to claim it. Nobody can stop them. Regardless of how many hurdles the opposition creates for vote bank appeasement, the Bharatiya Janata Party maintains an unequivocal stance, and we stand steadfast with the constitution.
1: Fair
0: the
1: enough. So you insist, you absolutely insist that this is not politics, this is Sanatan Aastha. Maulana Sajid Rashidi, क्या आप अनिला सिंह से इत्तेफाक रखते हैं कि वो कहती हैं कि जो इस्लामिक आक्रांताओं ने उनके वंशजों ने अत्याचार किए भारत के मूल निवासियों पर वो सभी के ऊपर एक कलंक है चाहे वो भारत के हिंदू हों और मुस्लिम हों और इसीलिए अगर ये दिव्य भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनेगा जन्मभूमि मथुरा में जिस तरह से अयोध्या में बना तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को किस रूप में देखते हैं
2: देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि ना कर्फ्यू है ना दंगा है सब चंगा ही चंगा है आधी बात तो इसमें सही है और आधी बात गलत है ना कर्फ्यू है ना दंगा है ये बात तो सही है लेकिन सब चंगा है ये बात सही नहीं है
1: ठीक
2: एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी आदमी को कोर्ट से पहले फैसला सुना देना कि हम यहाँ दिव्य और भव्य मंदिर बनाएंगे और बनना चाहिए आप खुद बताएं ईमानदारी से पत्रकार होने के नाते क्या ये संवैधानिक है ये कोर्ट की भी अवमानना है और ये हमारे संविधान की भी अवमानना है इस तरह का बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को नहीं देना चाहिए दूसरी बात अभी मामला कोर्ट में है
1: जी
2: और कोर्ट में आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा था कि एक झूठ जो फैलाया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है कोर्ट ने साफ कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो और कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो इसके बाद भी क्या 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट और मोहन भागवत का वो बयान कि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो सलट गया अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना क्या ये लोग अब भी ढटाई के साथ बेहयाई के साथ बेशर्मी के साथ मस्जिदों में मंदिर ढूंढेंगे क्या कानून की कोई इनके अंदर कोई किसी तरह का रहमोकरम नहीं है 1990
1: अनुराग भदौरिया का पहला रिस्पांस ले लूं फिर आपके पास वापस लौटूंगा
2: कोर्ट से बड़े हो गई है
1: ठीक ठीक ठीक अनुराग भदौरिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिनकी आस्था बाबर और औरंगजेब में है वो हिंदू आस्था क्या समझेंगे और कैसे समझेंगे आप किस रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान को देखते हैं
3: देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक मुझे दिल्ली की बीजेपी और लखनऊ की बीजेपी में थोड़ा सा कुछ हमें गड़बड़ नजर आ रहा है एक तरफ तो उज्बेकिस्तान से देश के प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिलता है और उसी उज्बेकिस्तान से ही तो मुझे लगता है बाबर भी आया था तो इसके मतलब कि आप जो अवार्ड उज्बेकिस्तान से मिला हो तो नहीं लेना चाहिए फिर अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात करें एक बात दूसरी बात अब क्या है उत्तर प्रदेश में प्रभु राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अब बात नहीं करना चाहती क्योंकि प्रभु राम के पहले बातें करती थी अयोध्या में प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हो गया चढ़ावा चोरी में प्रभु राम के जो जिनके देख रेख में मंदिर चल रहा था उनको बचाने की कोशिश भी हुई आप प्रभु राम की राम भक्त की जो बात करते जो सनातन की बात करते थे चढ़ावा चोरी पे चुप्पी साध गए तो फिर आप राम भक्त नहीं थे, आप सत्ता भक्त थे, सत्ता के लिए प्रभु राम की बात कर रहे थे। प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हुआ तो कौन आया उसको उजागर करने के लिए, उसके चढ़ावा चोरी को किसने उजागर किया, कौन जनता के सामने लेके आया, समाजवादी पार्टी। तो राम भक्त कौन हुआ, समाजवादी पार्टी। सनातन को कौन, सनातनी कौन हुआ, समाजवादी पार्टी। अब आप चुनाव आ गया, चुनाव के समय में हम
1: आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी सनातनी है। आपने तीन बहुत प्रमुख मुद्दे उठाए अनिला सिंह,
3: बात पूरी हो जाए, अभी बात पूरी नहीं हुई, दस सेकेंड
1: ठीक ठीक
3: दस सेकेंड
1: अनुराग भदौरिया आपने बात पूरी
3: की। समाजवादी कट्टर सनातनी है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम राष्ट्रभक्त भी हैं। राष्ट्रभक्त होने के नाते हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं, और जो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करेगा वही देशभक्त होगा। अब भारतीय जनता पार्टी बताए क्या न्यायपालिका का सम्मान करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी तो अब तक आप 10 साल से क्या कर रहे थे बताइए। अभी आप चुनाव के वक्त में आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप कृष्ण मंदिर की बात करने लगे, लेकिन 10 साल में क्यों नहीं आपने, अगर न्यायपालिका नहीं मानते थे तो बना देते आप, किसने आपको रोका था।
1: प्रमुख मुद्दे उठाए अनिला सिंह, जवाब दीजिए। पहले श्री राम मंदिर की चर्चा होती थी, जब दान चोरी का मुद्दा उठा तो क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए अब श्री कृष्ण मंदिर की बात की जा रही है। दैट्स पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इक्वली सिग्निफिकेंट। मौलाना साजिद रशीदी रेजेस द पॉइंट दैट व्हाई इज इट डोंट यू हैव एनी फेथ इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991।
0: देखिए गौरव, मैंने अभी रशीदी साहब की बात सुनी, ये वही रशीदी साहब हैं जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो ऐसा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आ गया था तो इनके सुर बदल गए थे और इन्होंने कहना शुरू कर दी, जबकि मैंने सैकड़ों डिबेट इनके साथ करी थी और इन्होंने हमेशा भगवान श्री राम को गाली देने का काम किया और जैसे ही वर्डिक्ट आ गया इनके सुर बदल गए। अभी मैंने शुरुआत ये करी थी कि मैं आशा करती हूँ, एक सेकंड चुप रहिए, जब आपका नंबर आया
2: तो बातें मत करो ना।
0: अभी अभी अभी मैंने अपनी बात की शुरुआत करी थी तो ये सोचते हुए करी थी कि 1.4
1: मौलाना साहब अनिला जी अपनी बात पूरी कर ले फिर आपके पास आऊंगा।
0: मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इट, आई वाज थिंकिंग दैट मिस्टर रशीदी इज गोइंग टू स्टिक टू हिज स्टेटमेंट व्हिच ही हैड सेड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन भगवान श्री राम दैट यस, जो हमारे इष्ट देवता हैं, कम से कम जो हमारे इंपॉर्टेंट इष्ट देवता हैं, जिनके मंदिर तोड़कर जहां मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं, वो सनातनी हिंदुओं को मिलना चाहिए। नाउ अगेन ही इज बैक टू स्क्वायर वन, ही इज बेशरम बेहया और जाने क्या क्या इन्होंने यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कान खोलकर सुन लीजिए रशीदी साहब, ये वो सनातनी है जिन्होंने 500 वर्ष संघर्ष करके भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया। और गर्व से कहती हूँ मैं उस राजनीतिक दल से आती हूँ जिसके कार्यकर्ताओं ने गाली गोली जेल सब भुगता है उस संघर्ष में। ठीक है, आप लोग या आप लोगों के टोकरा जो उठाए हुए प्लेकार्ड उठाए हुए खड़े हुए होते हैं ना हलाल हिंदू, वो लोग कहीं नजर नहीं आए थे। अनुराग भदौरिया जी ने कहा हम कट्टर सनातनी हैं। साहब आप कट्टर सनातनी आज अचानक अगर हो गए हैं तो कहिए अपने हलाल हिंदू नेता से कि खड़े होकर बोले कि उनके पिताजी और उनके चाचा जी ने जो जो कहा था कार सेवकों को गोली मारते हुए वो बिल्कुल गलत थे।
3: एक सेकंड,
0: एक सेकंड नहीं, मैं आपको 4 सेकंड दूंगी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनसे पूछिए,
3: सुन लीजिए,
0: इनसे पूछिए ना अभी गौरव जी,
3: ये हो रहा है ना जी, आई विल नॉट लेट यू स्पीक,
0: नो दिस इज माय टर्न, कैन यू आंसर मी दिस, कैन यू आंसर मी दिस राइट नाउ।
3: अरे मैडम सुनिए सुनिए, चिल्ला के बस चढ़ावा चोरी पे हमने बोल दिया तो आपका बीपी हाई होने लगा।
0: समाजवादी पार्टी इज गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्ट्रगल।
3: आप बताइए चढ़ावा चोरी कैसे हो गया, आप मेरी बात सुनिए,
1: एक एक करके
0: भव्य काना मंदिर शुड बी रीबिल्ट, जो जमीन हमारी गई हुई है 37 एकड़ वो वापस मिलनी चाहिए।
1: मौलाना साहब मैं आपके पास आऊंगा, पहले अनुराग भदौरिया उत्तर देना चाहते हैं। अनिला सिंह जी यू मेड योर पॉइंट, अनुराग भदौरिया जल्दी से उसका उत्तर
3: बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या बाबर ने रोका हुआ है कि यहाँ पे स्कूल ना बनाइए, स्कूल में रास्ते मत बनाइए? क्या बाबर ने रोका है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिले? क्या बाबर ने रोका है कि समय पे इलाज ना हो? कि बाबर ने रोका है कि आपको गड्ढे करवा दे रहे रोड में, या आप रोड बनाते हो रोडों पे गड्ढे हो जाते हैं? बाबर ने रोक लिया क्या? बाबर ने रोक लिया ना वृंदावन में, वहां पे नालियां जाम पड़ी हैं, भजभजा रही हैं। क्या बाबर ने रोका क्या वृंदावन में नालियां, वहां का नगर निगम काम ना करे? क्या बाबर ने रोका है क्या कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए, ये बाबर ने रोक लिया क्या? बाबर ने
1: अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, मौलाना साजिद रशीदी भी जवाब देना चाहते हैं।
3: क्या कमाल की बात
1: है, अनिला सिंह ने अनुराग भदौरिया उनली
3: यहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए।
1: अनुराग भदौरिया जी आपने अपना पक्ष रखा, अनिला सिंह जी उत्तर दीजिए।
0: सनातनी हिंदू No, no, I asked him that if you are a Sanadri Hindu, as you are claiming right now, then are you going to ask your halal Hindu neta, Aklesh Yadav, that he should defend whatever his father and chachas had said? Now, instead of answering that, he is asking me questions on development. Let me tell you, Mr. Bhadauria, here. अगर वृंदावन मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया तो हमारी सरकार ने निर्माण किया, जितना वहां पे विकास हो रहा है
4: आप भारतीय जनता पार्टी
0: के द्वारा हो रहा है, भगवाधारी मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है, आप लोग तो मथुरा में एक बार भी जीत कर नहीं आए,
4: स्कोर क्या रहा है,
0: समाजवादी पार्टी का स्कोर मथुरा में क्या रहा है,
1: वन बाय वन Both of you speaking simultaneously. Our viewers are unable to get either points of view. Maulana Sahab. Okay, only Maulana Sajid Rashidi. Maulana Sahab, Anila Singh Ji ek prashn utha rahi hai. Hinduon ke liye Ayodhya, Mathura aur Kashi. Ye bahut aastha ka prashn hai. Dekhiye, Yogeshwar Shri Krishna ka jagah janm yahan hua hai. कहीं और तो वो मंदिर बन नहीं सकता, यही बनेगा. मुसलमानों के लिए इस ईदगाह का क्या महत्व है? अगर औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़वा कर वहां मस्जिद बनवाई, कहीं और बन जाएगी. इसी जगह पर भारत के मुसलमानों को क्यों मस्जिद चाहिए? ये प्रश्न अनिला सिंह उठा रही है. गलत क्या है?
2: मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा. पहले यहां से बस बात शुरू करते हैं. औरंगजेब और बाबर ने मंदिर तोड़ी, मस्जिद बनाई, मंदिरों को लूटा. यहां भी मंदिरों को लूटा जा रहा है तो औरंगजेब और बाबर के वंशज कौन है? एक तो ये तय करना है हिंदुस्तान में लोगों को. दूसरी बात,
1: वो लोग तय करेंगे. मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि मुसलमानों के लिए मथुरा और काशी का क्या महत्व है, हिंदुओं के लिए तो उनकी सिविलाइजेशनल आस्था का प्रश्न है.
2: मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, और मैंने पहले सेगमेंट में भी जवाब दिया कि एक झूठ बाबरी मस्जिद के लिए भी फैलाया गया था, यहाँ भी एक झूठ फैलाया जा रहा है कि मंदिर तोड़ के ये चीजें बनी हैं.
1: और ये झूठ फैलाया जा रहा है आपके मुताबिक? औरंगजेब का अपना फरमान मौजूद है, पढ़ लीजिए उस फरमान को, और वो फरमान हम दिखा भी देंगे. पढ़ लीजिए औरंगजेब के फरमान को. और इसीलिए मैं वकील को लेकर आया था.
2: सब
1: ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या अलिफ में आपने पढ़ना नहीं सीखा तो आपको मालूम नहीं है. ये
2: आप एक बात बताइए,
1: कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है?
2: कोई लिखेगा मैंने तोड़ दिया? ये कौन सा फरमान बता रहे हैं आप?
1: उसने आदेश दिया तोड़वाने के लिए. पढ़ कर आइए मौलाना साहब.
2: मैंने मंदिर तोड़ा है.
1: पढ़ कर आइए मौलाना साहब, पढ़ कर आइए. और एक सबूत नहीं, तमाम सबूत है, तमाम सबूत है मौलाना साहब कि वहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर था. उस मंदिर को तोड़ने का फरमान औरंगजेब ने जारी किया और 1670 में मंदिर ध्वस्त किया गया. यह फरमान है. तो
2: यहाँ गर्भगृह था बाबरी मस्जिद में, तीसरे गुंबद के नीचे बीच.
1: मैं बात कर रहा हूँ मथुरा की, आप बात कर रहे हैं. मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप मुझे गाड़ी का नंबर बता रहे हैं? ऐसे थोड़ी डिबेट होगी. मथुरा पर बात कीजिए आज.
2: मंदिर
1: मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप मुझे गाड़ी का नंबर बता रहे हैं? ऐसे थोड़ी डिबेट होगी. मथुरा पर बात कीजिए आज.
2: मंदिर
1: पॉइंट वन. पॉइंट टू इक्वली इंपॉर्टेंट. दिस इज अ क्वेश्चन दैट इवन मुस्लिम्स मस्ट पॉन्डर. फॉर हिंदूज मथुरा एंड काशी आर प्लेसेस ऑफ सिविलाइजेशनल वर्शिप लाइक अयोध्या. सो इफ देर इज नो जस्टिस फ्रॉम द टाइम ऑफ औरंगजेब एंड द ब्रिटिश एंड सो मेनी इयर्स, डू हिंदूज डोंट हैव अ राइट टू सिविलाइजेशनल जस्टिस इन देयर ओन कंट्री इवन थ्रू कोर्ट्स ऑफ लॉ? And perhaps it's best for courts of law to decide. It's best for courts of law to decide. Why would some continue to defend the actions of invaders and their descendants? We'll let viewers decide. I've run out of time. I want to thank our guests. I've run out of time on this part of the show. There's a very big story, and we want to talk about those success stories of India, which is coming up on the other side of a quick break. I want to talk about a satellite, a great satellite that's been launched, a satellite launch that truly signifies Jai Jawan and Jai Kisan. That's coming up on the other side of a quick break on Battle Cry. Stay with us.

0: The Kokro Janta Party, formed barely months ago, has suffered its first rebel breakaway. CJP volunteer Manish Brahmbhatt has now floated the Kokro Janta Party Democratic. Brahmbhatt has accused the CJP leadership of having links with the Aam Aadmi Party, of selling out and politicizing the movement, of sidelining grassroots protesters, and alleges the CJP's aim is now to engage in political deals. But he has gone a step further, calling the Dipke-led camp Team Kejriwal.
1: Aaj hum Kokroch Janta Party Democratic ki shuruaat karne ja rahe hain. Ye shuruaat kyu karni padi? Andolan, desh ka andolan tha. Logon ne apna khoon pasina bahaya. To andolan safal hua. Par andolan safal hone ke baad, iska sauda ho gaya hai. Iska rajneetikaran ho gaya hai. अब ये टीम केजरीवाल बन चुकी है।
0: दीपके हाउएवर हैज हिट बैक।
2: अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी की बी टीम हूँ, तो मुझे लगता है ये सारे लोग बैठे आपस में और डिसाइड कर ले हम किसकी बी टीम है और किसकी क्या है। हमारे हिसाब से तो हम स्टूडेंट्स की ए टीम है।
0: ब्रह्मभट्ट सेज सीजेपी डी विल टेक ऑन करप्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच पार्टी इज इन पावर। द सीजेपी बिगन एज दीपकेस satirical online movement before evolving into a youth-led platform that spearheaded a campaign culminating in the resignation of Dharmendra Pradhan. And now, barely months into its existence, the movement is facing its first internal rupture. Factions and breakaways are the stuff of politics. But for a group that still describes itself as a pressure movement, this could be a first. Is CJPD the beginning of a new political experiment or the beginning of a new battle for the movement itself? Bureau Report, India Today.

0: वंशजों ने अत्याचार किए भारत के मूल निवासियों पर, वो सभी के ऊपर एक कलंक है, चाहे वो भारत के हिंदू हो और मुस्लिम हो। और इसीलिए अगर ये दिव्य भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनेगा जन्मभूमि मथुरा में, जिस तरह से अयोध्या में बना, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को किस रूप में देखते हैं?
1: देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि ना कर्फ्यू है ना दंगा है, सब चंगा ही चंगा है, आधी बात तो इसमें सही है और आधी बात गलत है। ना कर्फ्यू है ना दंगा है, ये बात तो सही है, लेकिन सब चंगा है ये बात सही नहीं है।
0: ठीक,
1: एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी आदमी को कोर्ट से पहले फैसला सुना देना कि हम यहाँ दिव्य और भव्य मंदिर बनाएंगे और बनना चाहिए, आप खुद बताएं ईमानदारी से पत्रकार होने के नाते, क्या ये संवैधानिक है? ये कोर्ट की भी अवमानना है और ये हमारे संविधान की भी अवमानना है। इस तरह का बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, अभी मामला कोर्ट में है
0: जी,
1: और कोर्ट में आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा था कि एक झूठ जो फैलाया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, कोर्ट ने साफ कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। और कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके बाद भी क्या 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट और मोहन भागवत का वो बयान कि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो सलट गया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना, क्या ये लोग अब भी ढटाई के साथ, बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ मस्जिदों में मंदिर ढूंढेंगे? क्या कानून की कोई इनके अंदर कोई किसी तरह का रहमो करम नहीं है? 1991
0: अनुराग भदौरिया का पहला रिस्पॉन्स ले लूं, फिर आपके पास वापस लौटूंगा।
1: कोर्ट से बड़े हो गई है।
0: ठीक। अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिनकी आस्था बाबर और औरंगजेब में है वो हिंदू आस्था क्या समझेंगे और कैसे समझेंगे? आप किस रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान को देखते हैं?
2: देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो एक मुझे दिल्ली की बीजेपी और लखनऊ की बीजेपी में थोड़ा सा कुछ हमें गड़बड़ नजर आ रहा है। एक तरफ तो उज्बेकिस्तान से देश के प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिलता है और उसी उज्बेकिस्तान से ही तो मुझे लगता है बाबर भी आया था, तो इसके मतलब कि आप जो अवार्ड उज्बेकिस्तान से मिला हो तो नहीं लेना चाहिए फिर, अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात करें। एक बात, दूसरी बात, अब क्या उत्तर प्रदेश में प्रभु राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अब बात नहीं करना चाहती, क्योंकि प्रभु राम के पहले बातें करती थी। अयोध्या में प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी में प्रभु राम के जो जिनके देख रेख में मंदिर चल रहा था उनको बचाने की कोशिश भी हुई। आप प्रभु राम की राम भक्त की जो बात करते, जो सनातन की बात करते थे, चढ़ावा चोरी पे चुप्पी साध गए, तो फिर आप राम भक्त नहीं थे, आप सत्ता भक्त थे, सत्ता के लिए प्रभु राम की बात कर रहे थे। प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी हुआ तो कौन आया उसको उजागर करने के लिए? उसके चढ़ावा चोरी को किसने उजागर किया, कौन जनता के सामने लेके आया? समाजवादी पार्टी। तो राम भक्त कौन हुआ? समाजवादी पार्टी। सनातन को कौन, सनातनी कौन हुआ? समाजवादी पार्टी। अब आप चुनाव आ गया, चुनाव के समय
0: तो
2: में हम
0: आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी सनातनी है। आपने तीन बहुत प्रमुख मुद्दे उठाए। अनिला सिंह,
2: बात पूरी हो जाए? अभी बात पूरी नहीं हुई। दस सेकेंड।
0: ठीक,
2: समाजवादी कट्टर सनातनी है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम राष्ट्रभक्त भी हैं। राष्ट्रभक्त होने के नाते हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं और जो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करेगा वही देशभक्त होगा। अब भारतीय जनता पार्टी बताए क्या न्यायपालिका का सम्मान करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी तो अब तक आप 10 साल से क्या कर रहे थे बताइए? अभी आप चुनाव के वक्त में आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप कृष्ण मंदिर की बात करने लगे, लेकिन 10 साल में क्यों नहीं आपने, अगर न्यायपालिका नहीं मानते थे तो बना देते आप, किसने आपको रोका था?
0: प्रमुख मुद्दे उठाए। अनिला सिंह, जवाब दीजिए। पहले श्री राम मंदिर की चर्चा होती थी, जब दान चोरी का मुद्दा उठा तो क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए अब श्री कृष्ण मंदिर की बात की जा रही है? दैट्स पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इक्वली सिग्निफिकेंट। मौलाना साजिद रशीदी रेजेस द पॉइंट दैट व्हाई इज इट डोंट यू हैव एनी फेथ इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991।
3: देखिए गौरव, मैंने अभी रशीदी साहब की बात सुनी। ये वही रशीदी साहब हैं जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो ऐसा वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आ गया था तो इनके सुर बदल गए थे और इन्होंने कहना शुरू कर दी। जबकि मैंने सैकड़ों डिबेट इनके साथ करी थी और इन्होंने हमेशा भगवान श्री राम को गाली देने का काम किया और जैसे ही वर्डिक्ट आ गया इनके सुर बदल गए। अभी मैंने शुरुआत ये करी थी कि मैं आशा करती हूँ, एक सेकंड चुप रहिए, जब आपका नंबर आए
1: गलत बातें मत करो ना।
3: अभी अभी
1: मैं
3: अभी
1: कभी धर्म पर नहीं बोलता,
3: मैंने अपनी बात की शुरुआत करी थी तो ये सोचते हुए करी थी कि 1.4
0: मौलाना साहब अनिला जी अपनी बात पूरी कर ले फिर आपके पास आऊंगा।
3: मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इट, आई वाज थिंकिंग दैट मिस्टर रशीदी इज गोइंग टू स्टिक टू हिज स्टेटमेंट व्हिच ही हैड सेड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन भगवान श्री राम दैट यस, जो हमारे इष्ट देवता हैं, कम से कम जो हमारे इंपॉर्टेंट इष्ट देवता हैं, जिनके मंदिर तोड़कर जहां मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं, वो सनातनी हिंदुओं को मिलना चाहिए। नाउ अगेन ही इज बैक टू स्क्वायर वन, ही इज बेशरम, बेहया और जाने क्या क्या इन्होंने यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। कान खोलकर सुन लीजिए रशीदी साहब, ये वो सनातनी है जिन्होंने 500 वर्ष संघर्ष करके भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया। और गर्व से कहती हूँ मैं उस राजनीतिक दल से आती हूँ जिसके कार्यकर्ताओं ने गाली गोली जेल सब भुगता है उस संघर्ष में। ठीक है, आप लोग या आप लोगों के टोकरा जो उठाए हुए प्लेकार्ड उठाए हुए खड़े हुए होते हैं ना हलाल हिंदू, वो लोग कहीं नजर नहीं आए थे। अनुराग भदौरिया जी ने कहा हम कट्टर सनातनी हैं। साहब आप कट्टर सनातनी आज अचानक अगर हो गए हैं तो कहिए अपने हलाल हिंदू नेता से कि खड़े होकर बोले कि उनके पिताजी और उनके चाचा जी ने जो जो कहा था कार सेवकों को गोली मारते हुए वो बिल्कुल गलत थे।
2: एक सेकंड,
3: मैं बोल रहा हूं, देखिए सवाल, मैं आपको 4 सेकंड दूंगी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनसे पूछिए,
2: सुन लीजिए,
3: इनसे पूछिए। अब ये गौरव जी
2: के घर पर चढ़ावा चोरी हो गया,
3: नो दिस इज माय टर्न, कैन यू आंसर मी दिस, कैन यू आंसर मी दिस राइट नाउ।
2: अरे मैडम सुनिए सुनिए, चिल्ला के बस चढ़ावा चोरी पे हमने बोल दिया तो आपका बीपी हाई होने लगा।
3: समाजवादी पार्टी इज गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्ट्रगल।
2: आप बताइए चढ़ावा चोरी कैसे हो गया, अब मेरी बात सुनिए
0: एक एक करके।
3: भव्य कान्हा मंदिर शुड बी रीबिल्ट, जो जमीन हमारी गई हुई है 37 एकड़ वो वापस मिलनी चाहिए।
0: मौलाना साहब मैं आपके पास आऊंगा, पहले अनुराग भदौरिया उत्तर देना चाहते हैं। अनिला सिंह जी यू मेड योर पॉइंट, अनुराग भदौरिया जल्दी से उसका उत्तर
2: बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या बाबर ने रोका हुआ है कि यहाँ पे स्कूल ना बनाइए, स्कूल में रास्ते मत बनाइए? क्या बाबर ने रोका है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिले? क्या बाबर ने रोका है कि समय पे इलाज ना हो? कि बाबर ने रोका है कि आपको गड्ढे करवा दे रहे हैं रोड में, आप रोड बनाते हो रोडों पे गड्ढे हो जाते हैं? बाबर ने रोक लिया क्या? बाबर ने रोक लिया ना वृंदावन में, वहां पे नालियां जाम पड़ी हैं, भजभजा रही हैं। क्या बाबर ने रोका क्या वृंदावन में नालियां, वहां का नगर निगम काम ना करे? क्या बाबर ने रोका है क्या कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए, ये बाबर ने रोक लिया क्या? बाबर ने
0: अनिल सिंह जी जवाब दीजिए, मौलाना साजिद रशीदी भी जवाब देना चाहते हैं।
2: क्या कमाल की बात
0: है, अनिल सिंह ने अनुराग भदौरिया उनली,
2: यहाँ पे महिलाओं का सम्मान होना चाहिए।
3: जी जी,
0: अनुराग भदौरिया जी आपने अपना पक्ष रखा, अनिल सिंह जी उत्तर दीजिए।
3: No, no, I asked him that if you are a Sanadri Hindu, as you are claiming right now, then are you going to ask your halal Hindu neta, Aklesh Yadav, that he should defend whatever his father and chachas had said? Now, instead of answering that, he is asking me questions on development. Let me tell you, Mr. Bhadauria here. अगर वृंदावन मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया तो हमारी सरकार ने निर्माण किया,
2: समस्या का समाधान बताइए, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आप बताइए, लोग परेशान हैं, यहाँ पे समय से इलाज नहीं हो रहा है, छात्र परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, रोडों पे गड्ढे हो जा रहे हैं, समय पे दवा नहीं आ रही,
0: वन बाय वन Both of you speaking simultaneously. Our viewers are unable to get either points of view. Maulana Sahab, okay, only Maulana Sajid Rashidi. Maulana Sahab, Anila Singh ji ek prashn utha rahi hai. Hinduon ke liye Ayodhya, Mathura aur Kashi, ye bahut आस्था का प्रश्न है। देखिए योगेश्वर श्री कृष्ण का अगर जन्म यहां हुआ है, कहीं और तो वो मंदिर बन नहीं सकता, यही बनेगा। मुसलमानों के लिए इस ईदगाह का क्या महत्व है? अगर औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई, कहीं और बन जाएगी। इसी जगह पर भारत के मुसलमानों को क्यों मस्जिद चाहिए, यह प्रश्न अनिला सिंह उठा रही है। गलत
1: है, मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा, पहले यहां से बस बात शुरू करते हैं। औरंगजेब और बाबर ने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाई, मंदिरों को लूटा, यहां भी मंदिरों को लूटा जा रहा है, तो औरंगजेब और बाबर के वंशज कौन है, एक तो ये तय करना है हिंदुस्तान में लोगों को। दूसरी बात,
0: वो लोग तय करेंगे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि मुसलमानों के लिए मथुरा और काशी का क्या महत्व है, हिंदुओं के लिए तो उनकी सिविलाइजेशनल आस्था का प्रश्न है।
1: मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, और मैंने पहले सेगमेंट में भी जवाब दिया कि एक झूठ बाबरी मस्जिद के लिए भी फैलाया गया था, यहाँ भी एक झूठ फैलाया जा रहा है कि मंदिर तोड़ के ये चीजें बनी है।
0: औरंगजेब झूठ फैलाया जा रहा है आपके मुताबिक? औरंगजेब का अपना फरमान मौजूद है, पढ़ लीजिए उस फरमान को, और वो फरमान हम दिखा भी देंगे, पढ़ लीजिए औरंगजेब के फरमान को। और इसीलिए मैं वकील को लेकर आया था।
1: सब
0: व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या अलिफ में आपने पढ़ना नहीं सीखा तो आपको मालूम नहीं है। ये
1: आप एक बात बताइए,
0: कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है?
1: वही लिखेगा मैंने तोड़ दिया, ये कौन सा फरमान बता रहे हैं आप?
0: उसने आदेश दिया तोड़वाने के लिए, पढ़कर आइए मौलाना साहब।
1: मैंने मंदिर तोड़ा है,
0: पढ़कर आइए मौलाना साहब, पढ़कर आइए। और एक सबूत नहीं, तमाम सबूत है, तमाम सबूत है मौलाना साहब कि वहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ने का फरमान औरंगजेब ने जारी किया और 1670 में मंदिर ध्वस्त किया गया, ये फरमान है। तो
1: यहां गर्भगृह था बाबरी मस्जिद में, तीसरे गुंबद के नीचे बीच।
0: मैं बात कर रहा हूँ मथुरा की, आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप मुझे गाड़ी का नंबर बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी डिबेट होगी। मथुरा पर बात कीजिए आज,
1: मंदिर उससे अलग बना है, कहाँ गर्भगृह की बात कर रहे हैं आप, कहाँ जन्मस्थान की बात कर रहे हैं आप?
0: यू नो दिस इज परहैप्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई दिस मैटर मस्ट बी डिसाइडेड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। कोर्ट्स ऑफ लॉ शुड डिसाइड दिस मैटर, दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, इक्वली इंपॉर्टेंट, this is a question that even Muslims must ponder. For Hindus, Mathura and Kashi are places of civilizational worship, like Ayodhya. So if there is no justice from the time of Aurangzeb and the British and so many years, do Hindus don't have a right to civilizational justice in their own country, even through courts of law? And perhaps it's best for courts of law to decide. It's best for courts of law to decide. Why would some continue to defend the actions of invaders and their descendants? We'll let viewers decide. I've run out of time. I want to thank our guests. I've run out of time on this part of the show. There's a very big story, and we want to talk about those success stories of India, which is coming up on the other side of a quick break. I want to talk about a satellite, a great satellite that's been launched, a satellite launch that truly signifies Jai Jawan and Jai Kisan. That's coming up on the other side of a quick break on Battle Cry. Stay with us.